शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. 8 बजे के उस पार आप सभी का स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पे। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। इट्स ट्यूसडे मॉर्निंग बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट फील्स लाइक अ मंडे मॉर्निंग, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स लॉन्ग वीकेंड के बाद ऐसी ही वाली जो है दोस्तों फील आती है, विच इज ओके। बट हैविंग सेड दैट, भाई यहाँ पर जो है हमारे करण जो है वो काफी सेंटी और इमोशनल हो चुके हैं। Why? Because कभी अलविदा ना कहना। उन्होंने ये एक मूवी बनाई थी जिसकी 20th anniversary जो है वो कर रहे हैं सेलिब्रेट।

celebrate, and he has gotten emotional, and for all the right reasons though. देखिए कुछ कुछ ऐसी movies होती हैं जो बहुत अपने वक्त से पहले जो है director अपने vision से बना देते हैं. I think एक ऐसी movie थी लम्हे, if you remember, right? जब लम्हे release हुई थी उस वक्त लोगों को वो concept, वो इस तरह से प्यार and you know क्यों और कैसे अनिल कपूर को वापस से श्रीदेवी की बेटी से, मतलब it was very weird and people could not kind of accept the whole idea of it. But years later, it kind of became the cult classic because times जो है वो चेंज हो गए, ग्रे एरिया चेंज हो गया, बहुत सारा कुछ है जो बदल गया. आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड विद कभी अलविदा ना कहना. यस, जब एक वो समय चल रहा था, एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि करण जौहर कभी भी मूवी बनाएगा, इट विल बी अबाउट फैमिली, इट विल बी अबाउट रोमांस, इट विल बी अबाउट दिस. बट द मोमेंट यू नो करण जौहर काइंड ऑफ ट्राई टू स्टेप आउट ऑफ हिज कम्फर्ट zone and try to make something which was very different at that point of time, लोगों ने उनको दिए बहुत ताने, and that's what he was sharing. जब ये 20 साल के completion पर करण जौहर was like that, मुझे इतना hatred मिला at that point of time कि at one point मुझे अपने आप पर ही शर्म आने लगी कि पता नहीं सच्ची में मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ गलत बना दिया. It was years later that people slowly started opening up to him, coming up to him कि भाई कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट में था and this girl who came up to me that you know I really like the movie Kabhi Alvida Na Kehna and I kind of get you when you talk about these things but I lied to my husband कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. That is because मुझे लगा कि lying is the only way out. मैं सच बोलूंगी तो he will ask me a lot of other questions which I am not ready to answer, I think. But then आपको मैं बता रही हूँ कि I really like the movie. And this is reality. There are a lot of times, a lot of people do this. उनको पसंद होता है लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि उनको पसंद नहीं आया because they don't want to answer a lot of things. क्योंकि लोग judge करते हैं आपको आपकी पसंद और नापसंदों से. सो वेल एनीवेज कंग्रेचुलेशंस टू करण जौहर. आई थिंक ही डिड रियली वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड उसने भी कोशिश की. और आज कभी अलविदा ना कहना जब लोग देखते हैं दे काइंड ऑफ गेट इट, डोंट यू? बट एनीवेज वेल ये तो हो गई वो वाली बात. गाने मुझे दिख रहे हैं बहुत ही शानदार. माया जन्नत सोना एंड अनदर 90s बैंगर कमिंग अप बैक टू बैक ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड मॉर्निंग.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
6: ओहो, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। नॉट बैड, मजा आया ना, एकदम मजेदार गाना भाई। गोविंदा के गाने कुछ हो ना हो भाई, एनर्जी अलग लेवल की देखे जाते हैं। 8:18 रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ, मस्ती का मंत्र है। गुड मॉर्निंग। यस अंतरा, सुबह सुबह आई, मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग है दोस्तों और ये हफ्ता है छोटा दोस्तों, कितनी खुशी की बात है। वेरी वेरी नाइस भाई। गोविंदा वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए हैं क्योंकि उनकी वाइफ जो है सुनीता जी, शी इज द वन हु हैज गॉट हर चांस टू टॉक, एंड या शी टॉक्स लाइक उनके टॉक से ज्यादा आई लव हर हंसी करके एकदम जो हंसती है ना, आई लव पीपल विद यूनिक काइंड ऑफ लाफ्टर, मतलब इतना सही लगता है ना एकदम अलग से। वो मेरी एक आंटी है ना उनकी हंसी बचपन से ही हमको लगता था ओ माय गॉड कितना, अनटिल डेट दैट हंसी इज हर काइंड ऑफ पहचान। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं ममता आंटी को पहचान सकती हूँ भीड़ में कहीं से भी सिर्फ उनके लाफ्टर से। इट इज सो वेरी यूनिक एंड लव हर टू डेथ। सो वेल, बट एनीवेज, यहाँ पर जो है गोविंदा हमारे जो है ही सेड दैट भाई 33-34 तक तो मैं शरीफ था कंपेयरिंग अपने उससे पहले वाले टाइम पर जब उनका एकदम ही वाज राइडिंग हाई ऑन सक्सेस एंड एवरीथिंग। बट हैविंग सेड दैट जो है पूछने वाला तो काफी सारा कुछ पूछते कहते कि सुनीता जी आजकल काफी बातें कर रही हैं, वो आपके काफी सारी चीजों के बारे में खुलासा वगैरह कर रही हैं और ये सारी बातें चल रही हैं। हाल ही में गोविंदा को किसी कोमल के साथ देखा गया एंड उसको लेकर पूरी न्यूज जो है वो वायरल हो गई। बट ही सेड दैट दूरी बनाने के लिए तोहमत लगाना जरूरी है। That was his response to Sunita Ahuja's allegations on him. कि ठीक है, दूर रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना कि तुम मुझ पे इल्जाम लगाओ कि इल्जाम। सर जी क्या ही बात कर रहे हो आप मतलब कभी कभी होता है ना कि लोग बहुत ज्यादा डाइसेक्ट नहीं करना चाहते हैं। Now these kind of statements, it's kind of a मौका की और अच्छा आप चाहते हो कि हम खुल के और बताएं व्हाई, बट एनीवेज उनकी लाइफ है सान्नू की, दिस इज द बेस्ट पार्ट, लाइक आई लव इट। सारी बातें करने के बाद लास्ट में लगाओ सान्नू की, है ना। गुड मॉर्निंग।
7: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
4: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
6: जीजी
5: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
6: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
7: बाजू
6: ट्रैफिक अपडेट
8: 8:29 by the studio clock, Radio Masti 24/7 Live. पर इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट देती हुई मैं और लेते हुए आप व्हीकल ब्रेकडाउन। आपको इस वक्त मेरे कौन CTE towards AYE after AM के Avenue 5 heavy traffic की खबर on CTE towards AYE between Balstair Road and PIE Changi, और एक एक्सीडेंट की खबर है on AYE towards MCE between Tuas West Road, avoid करें lane number 4. So well, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। मसक गली बन के उड़ते हुए आ रहा है मोहित चौहान की आवाज में फ्रॉम द मूवी Delhi 6, this gana aapki taraf. Yes, good morning and let me be back.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: Oh my God, let's talk about peak detailing. Radio Masti 24/7 live Antra के साथ यहाँ पर चल रहा है Masti का mantra. Good morning, good morning. भाई आदित्य धर और उनकी धुरंधर, आई मीन द धर हैज ऐसा धर के बैठे हुए हैं सबके दिलों में अभी भी जो है. People are talking about it, and it is not only the audience who is talking about it, even the celebrities in the industry, okay, they are still talking about it. They are giving examples ki bhai peak detailing agar seekhni hai to fir latest mein to tum Aditya Dhar se hi seekh lo ki bhai Dhurandhar mein is aadmi ne itni aisi जान लगा दी है, ऐसी डिटेलिंग में घुसा है. एंड मे बी सो आर माधवन हु इज नॉट इवन यू नो ही वाज टॉकिंग अबाउट कि मैं तो बहुत ही ज्यादा ऐसे सरप्राइज हो जाता था जब भी आई यूज टू गेट टू नो कि आदित्य धर ने ऐसा किया ऐसा किया. सो एक इतनी बड़ी मूवी उसने बनाई आदित्य धर ने, एंड ही सेड दैट 8 घंटे की जो है समथिंग सो as massive as Dhurandhar, and you know time run play jo hai iska kitna zyada hai and everything. To agar kahin par ek cheez jo hai miss bhi ho jaye, koi ek piche background mein ek cheez miss ho jaye, ek detail miss ho jaye, audience shayad notice bhi nahi karegi. They will not even you know realize that it was missing. But then Aditya Dhar decided, there was this one section he said that Aditya Dhar spent 10 crores just like that to get that peak detailing right, जो कि शायद वही audience ने miss भी कर दिया हो, but he wanted to ensure that whatever he has in mind, whatever he wanted to put out to the audience to make the story believable, to make the story authentic, to relate it so that you know the one who is watching can really enjoy the cinema of it, he just did it. And that is why Dhurandhar is just earning so much of praise. कहीं पर भी जाओ आज भी, लेटेस्ट में कौन सी मूवी मतलब थिएटर में जाके बहुत ज्यादा बढ़िया लगी? Dhurandhar 1-2 both. I think both did really really well, right? Wow. पहले हम लोग बात करते थे संजय लीला भंसाली एंड हिज पीक डिटेलिंग एंड व्हाई ही सो एडमेंट, उनको सारी चीजें सब कुछ ही क्यों चाहिए होता है. बट देन आई थिंक दिस वर्क्स, एंड दिस वर्क्स रियली रियली वेल व्हेन यू काइंड ऑफ डोंट कॉम्प्रोमाइज, राइट? वेल वर्किंग वेल फॉर हिम. लुकिंग फॉरवर्ड टू मिस्टर धर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन. लेट्स सी वो क्या लेकर आते हैं. लेकिन नॉट ओनली द मूवी एंड द स्टोरी एंड द स्क्रिप्ट एंड द सिनेमाटोग्राफी विच वॉज अमेजिंग, द एल्बम द म्यूजिक वॉज ऑल्सो इक्वली अमेजिंग. So yes, and Dhurandhar ka gana playlist mein to hai hi aana. Good morning.

0: नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: आई वॉज कम्प्लीटली वाइबिंग विद सोनू निगम का तू कब ये जानेगी तू, क्या ही गाना है, ओ माई गॉड। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, और यहाँ पर ऑफकोर्स चल रहा है मस्ती का मंत्रा, टोटली इन टू दिस ट्यूजडे वाला मोड। एंड आइए आपको सभी को अपडेट किया जाए। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पहले नॉर्मल लैंग्वेज चेंज हुई थी वो हम एक्सेप्ट कर ही रहे थे सॉर्ट ऑफ, बट अब जेन जी जो है वो इमोजीज का लैंग्वेज भी चेंज कर रही है, बट व्हाई? आई मीन हम पे थोड़ी सी तो दया खाओ, इतनी मुश्किल से तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आनी शुरू होती है, उसके बाद वो सिलेबस, ये हर रोज सिलेबस बदल रहे हैं। जो जो चीजें हमें लगता था कि ये इसका मतलब ये होगा, वो चीजें अब वो मतलब की रही ही नहीं है। हमने जो है ये सीखा कि अगर बहुत ज्यादा आपको हंसी आए, राइट, तो वो होता है लॉल, है ना, लॉल लॉल लॉल, लाफ आउट लाउड, करेक्ट, या फिर ROFL की भाई नीचे गिर गए, रोलिंग डाउन, ठीक है, हंस हंस के। बट अब अपेरेंटली ये तो है ही नहीं, अगर आपने ये बोल दिया तो आप अपनी उम्र बता रहे हो, वैसा वाला सिस्टम हो गया है भाई। Gen Z has found out this new laughter का इमोजी, एंड इट इज नॉट द वन जिसमें आंखों से आंसू निकल रहे हैं हंसते हंसते, या फिर ये अगर तो आप बहुत ही ज्यादा हंस रहे हैं, तो इफ यू हैव नॉट नोटिस देयर इज अ स्कल, एक स्कल का जो है वो इमोजी है हमारे इमोजी के बैंक में, That is dying out of laughter का sign. I am not even kidding. Yes, कि मतलब आप इतना हंसे कि मतलब स्किन भी आपके बॉडी से निकल गई एंड सिर्फ हंसते हंसते स्कल ही बचा, लाइक यू लाफ्ड आउट सो हार्ड दैट ओनली द स्कल इज लेफ्ट। ओके, बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त, मैं आपको अपडेट करना चाहती हूँ, अगर वो हंसते हंसते स्किन निकल दे तो नॉर्मल हंसी इज नॉट द इमोजी विद द क्राइंग आंसू निकल गए टाइप, इट इज द डॉल्फिन। हां जी भाई, डॉल्फिन से बिना परमिशन लिए डॉल्फिन को बना दिया है लाफ्टर का इमोजी, क्योंकि जब डॉल्फिन अपनी आवाज निकालता है तो वो कुछ ऐसी होती है, लेट मी टेल यू। जस्ट बिकॉज डॉल्फिन की आवाज ऐसी है, इन्होंने इसको लाफ्टर इमोजी बना दिया है, एंड नाउ दे आर नॉट, दे आर सेंडिंग ईच अदर डॉल्फिन्स बिकॉज दे आर लाफिंग। डॉल्फिन से परमिशन ली आप लोगों ने, डियर Gen Z, यार बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही गलत हो रहा है, आप बताएं। बट दिस इज फन, ओके, जस्ट सेंड अपने ही किसी दोस्त को डॉल्फिन एंड जस्ट वॉच द शेयर जॉय ऑफ वॉचिंग दम कंफ्यूज कि डॉल्फिन क्यों भेजा मुझे। गुड मॉर्निंग।

9 बजे के उस पार भाई मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि कौन कहता है कि हम स्लो लर्नर्स हैं। हम बिल्कुल भी स्लो लर्नर्स नहीं है, हम जैसे ही सीखते हैं उसको अप्लाई भी कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले आई वॉज टॉकिंग अबाउट द जेंजी का न्यू लाफ्टर इमोजी, दो बताए थे मैंने, एक था स्कल जवाब, हंस हंस के आपका स्किन ही निकाल दो, मतलब आत्मा आत्मा सब निकल जाए, है ना, उतना जोर से। और अगर थोड़ा सा कम हंस रहे हो लेकिन फिर भी हंस रहे हो तो डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन की आवाज कुछ ऐसी है। उसके बाद से सबके हंसी के इमोजीज मेरे पास स्कल और डॉल्फिन ही आ रहे हैं, सो वी आर गुड एट इट, राइट। और कोई तो पनवाड़ी सुनते सुनते कह रहा है कि इतना मेरा फेवरेट गाना अच्छा चला दिया, और वो भी इसी टाइम पे। नाइस नाइस सब।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ड्रॉप के साथ यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मैं खिलाड़ी तू अन्नाड़ी, रिक्रिएटेड वर्जन जरूर था। वेलकम बैक, मस्ती का मंत्रा चल रहा है अंतरा के साथ। और मैं आपको बताने वाली थी कि भाई अमिताभ बच्चन ने क्यों किया कंप्लेन एंड किससे किया कंप्लेन। अब आप सोचो कि मेरे साथ ही कई बार होता है, ठीक है, मैं जब कानपुर जाती हूँ तो कई सारे मेरे रिश्तेदार, मतलब मम्मी के दोस्त वगैरह होते हैं, जो कहते हैं कि बेटा तुम तो हमारे घर कभी आती ही नहीं हो, हमने तुमको 400 साल पहले एक मैसेज किया था, तुमने कभी उसका जवाब ही नहीं दिया। अब उनको कह नहीं सकते कि आंटी वैसे मेरे को कोई वो नहीं था कि मैं उस पर जवाब दूं, क्योंकि उसके बाद भी कॉन्वर्सेशन जो है वो बढ़ानी पड़ती ना, और वो मुझे करनी नहीं थी, बट इतना डिटेल में कौन जा रहा होगा, स्पेशली मम्मी के सामने उनकी बड़ी बड़ी आंखें हो उससे पहले ही ना, वो नहीं नहीं आंटी वो तो मिस हो गया होगा, आंटी आप वापस ही करना, मैं पक्का पक्का इस बार जवाब दूंगी। आई एम श्योर दैट हम लोग सभी कभी ना कभी इस सिचुएशन से होते हुए गुजरे हैं, बट नाउ यू जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि एक बड़ा सा शो, जो क्वेश्चन आंसर वाला शो करते हैं हमारे बच्चन साहब, वहां पे वो बैठे हैं, उनके सामने बहुत ही बेहद खूबसूरत, आई लव हर, प्रीति जिंटा बैठी हुई है, ठीक है, और

बच्चन साहब करते हैं कंप्लेन प्रीति जिंटा से कि हमें आपसे एक छोटी सी शिकायत है, वो क्या है कि हमने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया था, आपने हमें वापस जवाब नहीं दिया आज तक। जस्ट इमेजिन द इंटेंसिटी एंड द सिचुएशन, एंड मतलब या इतने बड़े प्लेटफॉर्म में लेजेंडरी बच्चन साहब आपसे कह रहे कि मैं तो नहीं बोला, मैंने तो तुमको हैप्पी बर्थडे बोला था लेकिन तुमने उसका जवाब नहीं दिया मुझे आज तक, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? दैट इज क्वाइट समथिंग। हाँ, क्यों नहीं दिया जवाब, क्यों नहीं दिया? तो वो बात वहां पे उस टाइम पे आई गई, हो गई। आई एम जस्ट इमेजिनिंग प्रीति जिंटा के दिमाग में उस टाइम पे क्या ही चल रहा होगा कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कई बार होता है ना कि कभी कभी किसी इंपॉर्टेंट लोगों का भी हमसे व्हाट्सएप जो है वो मिस हो जाता है। बट आई ऑल्सो नो पीपल हु ऑलवेज मेक श्योर कि अगर वो आपको टेक्स्ट करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेज पे, दे विल ऑलवेज डू कम वॉट में, and I have complete respect for them. Yeah, because I'm on the other side. I should na? Yeah, right. Good morning.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आइए 9:19 पे आपको बताया जाए कि भाई क्या है इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। हैवी ट्रैफिक आपको इस वक्त मिलेगा सीटीई टनल टुवर्ड्स एसएलई एट मर्चेंट रोड एग्जिट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन पीआईई टुवर्ड्स इटवास आफ्टर क्लेमेंटी एवेन्यू 6, एंड व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन पीआईई अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स चांगी आफ्टर सीटीई एसएलई। इसका कंजेशन मिलेगा टिल थॉम्सन रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 3। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज आई एम टोटली इनटू 90s। मेरे हाथ ना ऑटोमेटिकली इन गानों पे जा रहे हैं, बट क्या है, झूमने गाने का कुछ है आज ऐसा मूड। सो वेल, कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस गाना विच विल आल्सो मेक यू झूमो एंड गाओ साथ साथ, एंड आई विल बी राइट बैक इस गाने के उस पार। गुड मॉर्निंग।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: आया ना मजा आया ना आया ना आई नो मुझे भी कंप्लीटली मजा आया एंड द वे लता जी सेज ना ठंडी ठंडी पवन ओ माय गॉड ठंड सच में बहुत अच्छे से लग जाती है इट्स दैट कैसे बताओ कैसे बताएं क्यों इस गाने को चाहे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव वेरी गुड मॉर्निंग 9:00 हो चुके हैं 26 मिनट मस्ती का मंत्रा चल रहा है यहाँ पे अंतरा के साथ आइए भाई इंस्टाग्राम टेस्टिंग मोड पे चल रहा है भाई इंस्टाग्राम कह रहा है कि भाई वो चार चीज अभी जो टेस्टिंग मोड पे चल रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू चेंज इट बिफोर द ऑगस्ट एंड्स विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल दे आर टेस्टिंग कि अगर किसी ने रिपोस्ट किया है आपका कॉन्टेंट विदाउट गिविंग यू क्रेडिट मतलब वो आप का है बट उन्होंने वही यूज कर लिया है आपको क्रेडिट भी नहीं दिया है तो अब आपके पास वो राइट होगा कि आपका अगर मूड हुआ तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं इट्स कंप्लीटली गोइंग टू बी ऑन यू which is very good then another thing which they are testing is that if you post once okay it will appear on your whatsapp ka stories too so that cross posting between insta and whatsapp that's also kind of coming up aapke dm ke requests jo hai they are about to get a lot less overwhelming usme do new filters jo hai wo add kar diye ja rahe hain most followers and most recent isko test kiya ja raha hai फिल्टर जो है आप कर सकते हैं विद मोस्ट फॉलोअर्स कि जैसे आपने अपने कोई कोलैब वगैरह देख लिया या बिग अकाउंट्स को यू गिव पहले ऊपर टॉप में आ गया एंड यू कैन फिल्टर बाय मोस्ट रीसेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द न्यूएस्ट मैसेज विदाउट इवन स्क्रोलिंग ऑन फॉरएवर कि ओ माय गॉड जैसे 100 वाले आ जाते हैं ना व्हाट्सएप में ऊपर साइड में सो बस वैसे ही कुछ एंड देन इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली कंफर्म ये भी किया है दैट व्यूज मैटर मोर देन फॉलोअर्स सो आपका जो है आई थिंक दिस इज अमेजिंग या क्योंकि कई बार होते हैं कि लोग जो है देखते तो है बट फॉलो नहीं करते पोस्ट करो तो लाइक नहीं करते बट स्टोरीज पर डालो तो व्यू जरूर करते हैं और उनका नाम हमें दिख भी जाता है आई स्टिल डोंट गेट इट व्हाई दैट हैपेंस बट देन इट इज व्हाट इट इज Okay, Radio Basti 24/7 Live, but let's see that how much after these updates and everything, things change is area mein, but well, hamare area mein things aur gaane, they are always changing. Coming up next is Suraj Pe Mangal Bhari. Mat jao, aapne movie nahi dekhi hogi, maine bhi nahi dekhi hai, but ye gaana, definitely, yeah, suna hoga and abhi bhi sunenge. Good morning.

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे पुतली से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: कभी कभी इतनी अनबिलीवेबल सी बातें जो है पता चल जाती है कि क्या ही बताओ. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ इट्स ब्यूटीफुल ट्यूसडे वाली मॉर्निंग एंड यस मस्ती का मंत्र चल रहा है. सुबह 7 बजे से चल रहा है, अब तो धीरे धीरे हम लोग 10 बजे के करीब आते हुए जा रहे हैं. बट क्या हो अगर आपसे कोई कहे कि जब आप छोटे थे और आप पैदा हुए थे तो ऑलमोस्ट यू गॉट एक्सचेंज्ड एंड हो सकता है आपकी किस्मत ही कुछ डिफरेंट लिखी जा चुकी होती. आप यू विल गो लाइक व्हाट. बस जिंदगी को यही खेल खेलना बाकी रह गया था मेरे साथ, कुछ ऐसा मेरे जहन में तो यही डायलॉग्स जो है वो आ रहे हैं. बट यू विल नॉट बिलीव. ओके, डिड यू नो रानी मुखर्जी, अरे अपनी रानी मुखर्जी, दैट इज राइट, वो हो गई थी स्विच एट बर्थ इन द हॉस्पिटल. जी हाँ, खुद ही बताया उन्होंने हाल ही में, ये खुलासा किया कि व्हेन शी वाज बोर्न शी गॉट स्टक इन एक पंजाबी कपल के रूम में. सो शी सेड दैट माय मॉम वेंट एंड ब्रॉट मी फ्रॉम देयर एंड इट्स सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. भाई रानी मुखर्जी वाज बोर्न टू डायरेक्टर प्रोड्यूसर राम मुखर्जी एंड उनकी वाइफ कृष्णा मुखर्जी, ठीक है. एंड जब वो पैदा हुई शी वॉज एक्सीडेंटली एक्सचेंज विद अ पंजाबी बेबी हॉस्पिटल में ही. शी ओनली रियूनाइटेड अपनी फैमिली के साथ जब उनकी मम्मी ने नोटिस किया कि पंजाबी बच्चे की जो आंखें थी वाज अ डिफरेंट कलर. एंड देन जैसे ही उनको ये फिगर आउट हुआ कि ये मेरा बच्चा नहीं है, शी डजंट हैव ब्राउन आईज एंड माय डॉटर हैज, ही डजंट हैव ब्राउन आईज, माय डॉटर हैज ब्राउन आईज, सो जाओ मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ. अब अगर आंटी ने उस टाइम पे फिगर आउट नहीं किया होता, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो रिकवर कर रहे होते हो आप अपने सारे चलो आफ्टर बर्थ एंड ऑल, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, राइट. ओ माई गॉड, सवाल पूछ के मैं खुद ही सोचने लग गई अगर कल को मेरी मम्मी आके बोलते कि तुम तो स्विच हो गई थी बर्थ में, तो फिर मेरे भाई की फैंटेसी जो है वो सच्चाई में बदल जाएगी कि तुझे कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे. एनीवेज चलो फिलहाल के लिए सोचना है क्यों, जो चीज होनी नहीं है उसको सोच के क्या करना है, क्यों खून जलाना है ना. हम सब अपने मम्मी के बच्चे प्यारे वाले. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चलिए इसी बात पर. यही गाते हैं कि हम तो ऐसे है भैया और ये अपना टशन है भैया.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी।
4: कृषिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
6: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
7: That's right people, अगर आपको कृषिवल के ये नट्स बिल्कुल जाके सैंपल करने हैं, ट्राई करने हैं, हाथ छू के देखना है, then this is the मौका you should and you must not miss। भाई फेयर प्राइस में NTUC फेयर प्राइस एंड अपेरा का जॉइंट रोड शो होने वाला है एंड दे आर प्रेजेंटिंग कृषिवल के नट्स 17-23 अगस्त के बीच में। आपने सिर्फ जाना है सिटी स्क्वायर मॉल और वहां जाकर आप पाएंगे कृषिवल नट्स, जो कि एक बार आप उसको ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट to ggmartonline.com and you will order them more. Buy healthy snacking and that is the best thing you can do to your body at this point of time, isn't it? And the कमाल की वैरायटी दे हैव इन दिस, फ्रॉम ड्राइड क्रैनबेरीज टू द आमंड्स टू द कैश्यूज एंड उसमें भी फ्लेवर्स इतने सारे कि मतलब क्या है। सो प्रीमियम क्वालिटी के तो ये है ही है, इसमें कोई एडेड आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, फ्लेवर्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। दे आर रिच इन प्रोटीन फाइबर एंड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यू कैन थिंक ऑफ, राइट? एंड दे आर वेरी मच हाइजीनिकली प्रोसेस्ड एंड पैक्ड एज वेल। सो वेल जीजी मार्ट जो आपका पर्सनल ग्रोसर है, तो हम तो पहले से ही बोलते हुए आ रहे हैं कि एक बार ट्राई करो, बार बार आप उनके पास जाओगे एंड व्हेन यू विल गो देयर यू विल फाइंड सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। यू कैन इन फैक्ट प्री बुक योर गणपति आइडल एज वेल, जिसपे कमाल के ऑफर्स जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो इफ यू आर अ बिग टाइम ऑन प्लानिंग एवरीथिंग, आई थिंक ggmart.com इज द प्लेस वेयर यू शुड लॉग इन एंड जस्ट काइंड ऑफ गो फॉर इट। एंड नॉट फॉरगेट, इफ यू वांट टू ट्राई द कृषिवल नट्स, यू कैन गो टू सिटी स्क्वायर मॉल 17-23 अगस्त। आप बिल्कुल वहां पर ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बाकी बातों में नमक ज्यादा और गाने में चीनी कम है, चीनी कम है। एंड यस, उसके बाद तो बाय बाय बोलना है, देखते हैं कितना गाना यहाँ पे प्ले हो सकता है। लेट्स गो।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: इसको कहते हैं ग्रीडी होना, ग्रीडी. मुझे इतना मन था ये गाना सुनने का, लेकिन मुझे ये भी पता था कि पूरा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वक्त होने वाला है यहाँ पे खत्म. यस, 7 बजे से 10 बजे तक आपको कंपनी देती हुई मैं अंशरा फिलहाल यहाँ से एग्जिट मारने वाली हूँ. और यहाँ पर जो है 1 घंटे का कैफे का ब्रेक एंड आज तो नूपुर नहीं है. बट नूपुर नहीं है तो कौन है, कौन आएगा, कौन बनकर सरप्राइज आपका दिल चुरा के लेकर जाएगा. बट डेफिनेटली यू हैव टू ट्यून इट एट 11 टू नो दैट. एंड लेट मी टेल यू, यू विल लव इट, लाइक कंप्लीटली लव लव लव इट. सो वेल, अब आप 11 बजे का इंतजार करो. मैं आपसे शाम को जो है बिल्कुल मिलती हूँ, और फिर होगी ढेर मस्ती, दिल से बातें. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
3: No talking allowed. सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। Back to back गाने only on Musti Music Cafe.
4: Radio Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.
3: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Musti 24/7. Musti pe Bhakti, subah 6 baje se.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है
3: मुझे चांद पे ले चलो
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेले है
4: जोश में रहो
5: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर ऐप मेन्यू
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
7: अर्जुन आएंगे
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म हेलो टू एवरीवन। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका हम सफर, नाम है मेरा समर और इस बेहतरीन शो का नाम है लेजेंड्स फिर से। इस दुनिया में दोस्तों हर चीज की शुरुआत कभी ना कभी तो होती है, जैसे कि पहली फिल्म, पहला मैच, क्रिकेट का पहला सिक्सर, पहला शतक। ऐसे ही अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो पहला सुपरस्टार, और पहले सुपरस्टार का नाम आते ही हमें याद आते हैं राजेश खन्ना। तो अगर कोई एक्टर पहली बार सुपरस्टार बना था तो कोई एक्ट्रेस भी बनी होगी और बननी भी चाहिए। अब देखिए, राजेश खन्ना साहब के दौर से पहले एक्टिंग के ऐसे बहुत सारे महारथी थे जिनकी एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं था, बहुत ही कमाल के एक्टर थे, लेकिन आज तक उन्हें सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस भी हुई लेकिन उन्हें सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी अच्छी अच्छी हीरोइंस को सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला तो फिर किसको मिला? तो सिंगापुर, आपके इस प्रश्न का उत्तर है बॉलीवुड की चांदनी, हवा हवाई, द वन एंड ओनली श्री देवी।
2: अरे

जी हाँ, सिंगापुर हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार श्री अम्मा यंगर अयप्पन, जिन्हें हम प्यार से श्री देवी कहते हैं, यही थी हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। आज का ये शो श्री देवी जी के नाम रहेगा। आज करेंगे हम इन्हीं की बातें और आप सुनेंगे इन्हीं की।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव, मेरे यानी समर के साथ, और शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से। आज हम बात कर रहे हैं हवा हवाई श्रीदेवी जी की। श्रीदेवी जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, किसी फिल्म में जितना इम्पैक्ट हीरो का होता था उतना ही इम्पैक्ट श्रीदेवी का होता था। अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर श्रीदेवी 13 अगस्त 1963 में मद्रास, जो अब चेन्नई कहलाता है, यहाँ पैदा हुई। पिता एक लॉयर थे, वकील थे, और माँ थी हाउसवाइफ। तो ये माँ के ज्यादा करीब रही, जैसा कि अक्सर बेटियों के साथ होता भी है, इसलिए इनके हर डिसीजन में माँ का एक अहम रोल हुआ करता था। 4 बरस की उम्र में ही इन्होंने अपने जीवन की पहली फिल्म कर दी थी। इस फिल्म का नाम था कंदन करुणाई, जो केजे नागराजन ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में एक सीन था जब इनको एक रोड क्रॉस करनी थी, लेकिन ये घबरा जाती है और सीन में आ रही गाड़ी से इनको टक्कर लग जाती है। बहरहाल बाद में इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बाकी कुछ सीन श्रीदेवी ने जिस तरीके से किए थे उनसे डायरेक्टर बड़े इंप्रेस हो गए थे और इनसे कहा था कि हम तुम्हें आगे की फिल्मों में मिलेंगे। बहरहाल इन फिल्मों के बाद ये कई फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती रही, तमिल फिल्मों में। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी सी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था तो फिर पढ़ाई? तो भाई साहब, श्रीदेवी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। एक काम करते हैं, इनके आगे की कहानी में आपको कुछ गानों के बाद सुनाता हूँ। क्या करूँ, श्रीदेवी जी के इतने बेहतरीन गाने आज हमारी लिस्ट पर कि मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आपको। तो पहले गाने सुनिए, कहानी में सुनाने के लिए वापस आता हूँ। आप सुनते रहेगा रेडियो 24/7 लाइव, समर है मेरा नाम, यहीं पर मिलूंगा आपसे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
4: चांदनी

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आ गए आप गाने सुन के। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल से, ये लेजेंड्स फिर से है जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे श्रीदेवी जी की पढ़ाई के बारे में। जब इनको ज्यादा काम मिलने लग गया फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, तो इनकी मम्मी ने एक टीचर इनके साथ रखवा दी जो इन्हें शूटिंग के बीच ब्रेक के दौरान पढ़ाता था। लेकिन जब दो दो शिफ्ट में ये काम करने लगी तो पढ़ाई का मामला कुछ बैठा नहीं। जब ये 9 बरस की थी तब इनको पहली हिंदी फिल्म मिली राम मेरा नाम, जो 1972 में आई। इसके बाद इन्होंने 75 में आई रोमांटिक हिट फिल्म जूली में भी एक छोटा पर बहुत ही अहम रोल किया। हीरोइन की छोटी बहन बनी थी, लेकिन एज अ लीड हीरोइन हिंदी फिल्मों में इनकी पहली फिल्म आई 16 साल। यानी कैसे, इस फिल्म में इनके साथ हीरो कौन था? इनके साथ अमोल पालेकर लीड रोल में थे। ये फिल्म उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, हालांकि इस बीच ये तमिल फिल्मों में काम कर रही थी और करती रही, और वहां इनकी ज्यादातर फिल्में हिट हो रही थी। 13 साल की उम्र में इन्होंने तमिल फिल्मों में एज अ लीड हीरोइन काम करना शुरू कर दिया था। वो फिल्म थी मुंद्रू मुडीच, इस फिल्म में ये हीरोइन थी, और इस फिल्म में इनके साथ थे तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत, रजनी सर जी। लेकिन इस फिल्म की एक खास बात है, क्योंकि अब तक श्रीदेवी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काफी फिल्मों में काम कर चुकी थी, तो इन्हें इस फिल्म के लिए रजनीकांत से ज्यादा पैसे मिले। यानी श्रीदेवी को 5,000 और रजनी सर को महज 2,000। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं सिंगापुर की श्रीदेवी कितनी दमदार एक्टिंग करती थी। वेल, अभी बातें और भी बाकी हैं, लेकिन वो सब होंगी इन गानों के बाद। यू स्टे कनेक्टेड टू रेडियो 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो ऑन द गो।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं आज श्रीदेवी की कहानी सुना रहा हूँ। तमिल फिल्मों में तो श्रीदेवी जी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अभी तक हिंदी फिल्मों में कोई बड़ी फिल्म हिट फिल्म आई नहीं थी उनकी। हालांकि श्रीदेवी हिंदी फिल्मों में काम करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन श्रीदेवी बताती हैं कि एक बार एक दिन एक डायरेक्टर के राघवेंद्र राव इनके घर आए। ये वही राघवेंद्र राव हैं जिन्होंने इनके साथ फिर आगे चलकर हिम्मत वाला जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई। तो इन्होंने इनकी माँ से कहा कि हम आपकी बेटी का टेस्ट लेना चाहते हैं, एक फिल्म है उसमें हमें लगता है कि ये ठीक रहेगी, जमेगी, लेकिन हम इसे एक साड़ी में देखना चाहते हैं क्योंकि जो रोल है वो जो कैरेक्टर है वो साड़ी पहनती है। बहरहाल श्रीदेवी अंदर जाकर साड़ी पहनकर आ गई और राघवेंद्र उन्हें देख कर चले गए। दूसरे दिन वो आए और श्रीदेवी की मम्मी से बोले, बधाई हो, आपकी बेटी हीरोइन बन गई है। सिंगापुरी साड़ी वाले कैरेक्टर की मूवी का नाम था सदमा, जो 1983 में आई और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही, आपने भी देखी होगी। मतलब अब श्रीदेवी का तमिल और हिंदी दोनों फिल्मों में नाम हो गया था। इस फिल्म में इनके साथ थे कमल हसन जिन्होंने बेहद कमाल का अभिनय किया था। फिल्म का म्यूजिक इलैया राजा ने दिया था। सदमा का नाम हिंदी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में लिया जाता है। और एक बार श्रीदेवी जी से पूछा गया था कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो उन्होंने भी सदमा का नाम लिया था।
2: ऐ

सिंगापुर रवि सदमा का नाम लिया तो सदमा के गाने मुझे याद आ गए। एक ब्रेक ले लेते हैं, इन गानों को सुन लेते हैं और इन गानों के बाद फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। मैं हूं समर, आज श्रीदेवी की कहानी लेकर हाजिर हूं यहीं पर।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
3: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
6: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
7: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ, ओनली ऑन रेडियो मजी 24/7 लाइव, जो है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो ऑन द गो। आज की फनकार हैं हवा हवाई श्रीदेवी जी। 1983 में सदमा के बाद फिर श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक फिल्म की। इसी साल की राघवेंद्र के डायरेक्शन में जितेंद्र साहब के साथ इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई हिम्मत वाला। इस फिल्म के बारे में जितेंद्र बताते हैं कि इस फिल्म की जब सिल्वर जुबली की पार्टी थी तब पार्टी में सब थे, जितेंद्र के दोनों बच्चे भी साथ थे, एकता और तुषार। और जब ये गाना बजा जो अभी आपने सुना था, तो जितेंद्र की बेटी एकता, जो आज एक बहुत ही बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो श्रीदेवी जी का हाथ पकड़कर डांस करने लगी। फिर अगले साल यानी 1984 में तोहफा आई और ये फिल्म एक बार फिर जितेंद्र के साथ थी। इसका वो गाना तोहफा तोहफा तोहफा लाया लाया लाया, इसने तो हंगामे मचा दिया था। इस फिल्म की भी एक कमाल की स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिएगा। इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े विलेन शक्ति कपूर भी थे और उनका एक तकिया कलाम था, एक स्टाइल था इस फिल्म में जो बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। ये मान लीजिए कि उस स्टाइल को हर कोई कॉपी करने लगा था बाद में, और यकीन मानिए आज भी करता है। वो स्टाइल था लोलिता। पहली बात तो ये कि इसे 32वें टेक में शक्ति कपूर ने सही बोला, और दूसरी बात ये कि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आई कि लड़कियों को आऊ ललिता बोल के छेड़ने के इल्जाम में 28 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हिंदी सिनेमा का इम्पैक्ट रहता है। आप भी एक बार ये डायलॉग सुनिए, आऊ ललिता आऊ आने दो
2: आऊ ललिता।
1: तो आप समझ सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा होगा इस डायलॉग का। फिलहाल इसी मजेदार बात के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, श्रीदेवी जी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं समर आपके साथ, सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर, ओनली हिंदी रेडियो ऑन द गो।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं.
1: Life थोड़ी boring लग रही है. Tension नहीं लेने का. Time for your therapy session. Musti ka mantra with RJ Antara. जहाँ न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त. बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
5: वेलकम बैक. आई आपका स्वागत एक बार फिर से समर रेडियो मसी 24/7 लाइव से कर रहा है और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से. अच्छा सिंगापुर, कम से कम ये तो बताइए कि आपको श्रीदेवी स्पेशल ये शो लग कैसा रहा है. हमारे फेसबुक पेज पर आइए और ये भी बताइए कि आप अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं तो हम सुना सकते हैं आपको. हाँ अभी आप लिख भेजिए. चलिए अब आपको एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूँ. श्रीदेवी वन ऑफ द बेस्ट डांसर थी हिंदी फिल्मों की, इसमें कोई दो राय नहीं थी. लेकिन क्या आपको पता है कि इन्होंने कभी डांस की कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली थी, ये तो इनके अंदर नेचुरल है. श्रीदेवी ने एक बार बताया था कि जब वो अपनी मम्मी पापा के साथ फिल्म देखने जाती थी तो जब भी कोई गाना आता था तो श्रीदेवी उठकर नाचने लग जाती थी. फिर मम्मी पापा उनको बिठाते थे, बैठ जा क्या करिए. यानी श्रीदेवी बोलते हैं कि गाना सुन के वो ऑटोमेटिकली डांस करने लग जाती हैं. सिंगापुर अब तक श्रीदेवी पूरी तरह बॉलीवुड में अपना नाम जमा चुकी थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में इनकी आवाज को डब कराया जाता था क्योंकि हिंदी इनकी इतनी फ्लुएंट नहीं थी, इतनी प्रोफिशिएंट नहीं थी. इन्होंने अपनी पहली फिल्म जो खुद की आवाज में की थी वो जानते हैं कौन सी थी? वो थी चांदनी. लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले उस फिल्म की बात करते हैं जो श्रीदेवी के करियर की माइलस्टोन फिल्म साबित हुई और वो फिल्म थी 1987 में आई मिस्टर इंडिया. इस फिल्म के बाद तो श्रीदेवी हिंदी फिल्मों में सबसे बड़ी हीरोइन बन गई और यही वो फिल्म थी जिसने श्रीदेवी को बनाया मिस हवा हवाई.

सलीम जावेद की लिखी हुई, शेखर कपूर का डायरेक्शन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का धमाकेदार म्यूजिक, जावेद अख्तर के बोल, अनिल कपूर और श्रीदेवी की जबरदस्त एक्टिंग ने इस फिल्म को 4 चांद लगा दिए थे। उस साल की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। अब सिंगापुर जब मिस्टर इंडिया का जिक्र हुआ है तो एक आदमी का नाम लिए बिना इस फिल्म की बात अधूरी ही रहेगी। अब गैस कीजिए हम किसको मिस कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वो जो हमेशा खुश होने के बाद बोलता था मोगेम्बो खुश हुआ, अमरीश पुरी साहब, जिनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी। लेकिन शो श्रीदेवी का है तो हम उन्हीं की बात करते हैं। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए इन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड और गाने तो सारे के सारे ही सुपर डुपर हिट थे। हवा हवाई के अलावा अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, और वो रोमांटिक वाला काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज में, आहा क्या बात थी।

तो क्या बोलते हैं सिंगापुर, इसी बात पर सुनाया जाए ये गाना पूरा। तो सुनिए इस गाने को और मिलिए हमसे यहीं पर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। श्रीदेवी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। कीप लिसनिंग।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
0: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
0: Your personal grocer.
4: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
0: वेलकम बैक, लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं समर लेजेंड्स वाला लेकर लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज की हमारी फनकार हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आप जानते ही उन्हें, सुपर टैलेंटेड एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी। सिंगापुर शायद आपको बताना हो कि ऋतिक रोशन ने अपनी लाइफ का पहली बार कैमरा फेस श्रीदेवी जी के साथ किया था। हाँ, एक फिल्म बन रही थी भगवान दादा, राकेश रोशन इसके प्रोड्यूसर थे और इस फिल्म में ऋतिक ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था। तो ऋतिक बहुत नर्वस हो रहे थे, लेकिन श्रीदेवी ने ऋतिक से कहा कि तुम नर्वस मत हो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जितने टेक लेना चाहते हो ले लो, बिंदास कर लो, कभी आपको वक्त मिले तो देखिएगा आप ये फिल्म। इसमें एक सीन है जब ऋतिक श्रीदेवी के सामने हंसते हैं, लेकिन वो ठीक से हंस नहीं पा रहे थे। वैसे हंसना बड़ा मुश्किल होता है कैमरे के सामने भी और माइक के सामने भी, तो ऋतिक जो खुद एक फिल्मी परिवार के बैकग्राउंड से आते थे वो भी कैमरे को ठीक से फेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन श्रीदेवी ने जब उन्हें हिम्मत दी और कहा कि तुम जितनी बार रीटेक करवाना चाहो करो, लेकिन परफेक्ट शॉट दो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा, तुम बिंदास रहो, मेरे सामने हंसो, तो ये बात उनको जच गई। और काफी रीटेक के बाद, हालांकि काफी रीटेक्स लगे, लेकिन उसके बाद सीन परफेक्ट आ गया। वेल, श्रीदेवी की फिल्मों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 87 में मिस्टर इंडिया से धमाका मचाने के बाद इन्होंने हर साल कम से कम एक फिल्म तो ऐसी की ही जिसने हंगामा मचा दिया। लेकिन उन फिल्मों का जिक्र करने से पहले एक फिल्म का नाम मैं लेना भूल गया, चलिए अब ले लेता हूँ, नगीना। इसमें इनके साथ ऋषि कपूर थे। ये मिस्टर इंडिया से एक साल पहले आई थी और इसमें श्रीदेवी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया था साहब, नागिन का रोल प्ले किया था, इच्छाधारी नागिन। और आप देखिए किस तरीके से इन्होंने आंखों से जबरदस्त एक्सप्रेशंस दिए।

आंखों में लेंस लगाने पड़ते थे इस फिल्म की शूटिंग के लिए, और इसकी वजह से उनकी आंखों में दर्द रहने लगा। मतलब श्रीदेवी ने खुद कबूल किया था कि इंटरव्यू में कि जब वो शूटिंग के बाद घर लौटती थी तो उनकी आंखें दर्द करने लग जाती थी, इतना पेनफुल था ये। लेकिन इसका आउटकम जबरदस्त था, आउटस्टैंडिंग था। वैसे आप सोच रहे होंगे कि क्या यार बेकार की बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई आंखों में दर्द हो जाता है। अरे भाई साहब, अगर कोई इतने सारे एक्सप्रेशंस दे अपनी आंखों से, वो भी लेंस लगाकर और वो भी इतनी तेज लाइटों के सामने, तो अच्छे अच्छे की आंखों में क्या सर में भी दर्द हो जाता है। मेरी बात नहीं मान रहे आप? मौका मिले तो नगीना देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं था कि इसके बाद ये थक गई थी ऐसी फिल्म करने से, उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद इसी का एक सीक्वल आया था काफी सालों बाद, निगाहें उसका नाम था, और इसमें सनी देओल इनके ऑपोजिट थे, वो भी इन्होंने की। 89 में भी इनकी दो बेहतरीन फिल्में आई, चालबाज और चांदनी। लेकिन सिंगापुर, इसके बारे में हम बात करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो आप सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स, फिर से आज श्री की कहानी, समर की जुबानी।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, ट्रेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ और श्रीदेवी की हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 लाइव है। ये सिंगापुर का एकमात्र 24 घंटे सातों दिन आपका साथ देने वाला हिंदी का बॉलीवुड रेडियो स्टेशन। श्रीदेवी के अभिनय में वो दम था साहब कि अगर कोई जाना माना एक्टर भी नहीं है ना फिल्म में तो वो अकेली ही बहुत थी फिल्म को हिट करने के लिए, इतना मादा रखती थी वो। हम बात कर रहे थे 89 में रिलीज हुई दो फिल्मों की, एक तो चालबाज जिसमें वो रजनीकांत और सनी देओल के ऑपोजिट थी और दूसरी चांदनी, ऋषि कपूर के साथ ये फिल्म थी और साथ में उनके विनोद खन्ना भी थे और दोनों ही फिल्मों में एक बार फिर से इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया था। चांदनी में पहली बार ये यश चोपड़ा के डायरेक्शन में काम कर रही थी और इस फिल्म का एक एक गाना साहब जबरदस्त हिट हुआ, जैसे कि ये
2: रंग

0: या फिर विनोद खन्ना श्रीदेवी वाला वो गाना।
1: लगी आज सावन की फिर वो
0: चढ़ी है। हर गाना साहब, हर गाना हर किसी की जुबान पर आ गया था, लेकिन एक गाना ऐसा जो मैंने अभी बचा कर रखा, और इस गाने का नाम मैं बड़ी इज्जत से लूंगा, क्योंकि ये सिर्फ गाना नहीं है बल्कि ये एक लोकगीत, एक फोक सॉन्ग बन गया, और वो गाना है ये।

देखिए सिंगापुर होता क्या है कि फिल्मी गाने तो फिल्मी रहते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो फिर लोकगीत बन जाते हैं, मतलब इतने हिट हो जाते हैं कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और फिर हर फंक्शन में वो एक अहम हिस्सा हो जाते हैं, उन्हें बजना ही बजना होता है। ये गाना भी कुछ ऐसा ही था। इसके बगैर शादियां होना असंभव था भाई। लेडीज संगीत तो सोच भी नहीं सकते आप। अगर शादी ब्याह के किसी फंक्शन में लड़की को कहा जाता था कि आपको डांस करना है तो ये गाना जरूर जरूर जरूर होता था वहां पर, और अमूमन पहला गाना यही होता था। बख्शी साहब ने क्या खूब लिखा है, और शिव हरी साहब का कमाल का म्यूजिक, हर चीज जबरदस्त है इसकी। और चालबाज का वो गाना तो इनका सिग्नेचर गाना बन गया था, न जाने कहां से आई है, न जाने कहां को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की। इस गाने ने भी धूम मचा दी थी, यानी श्रीदेवी नंबर वन की पोजीशन पर पहुंच गई थी। इन फिल्मों के हिट होने के बाद जैसे शेयर मार्केट ऊपर उठता है ना, उसमें उछाल आता है, वैसे ही श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड में टॉप पर चला गया था, और ये हीरोज से भी ज्यादा फीस लेने लग गई थी उस दौरान। उस जमाने में ये 10 लाख रुपए पर फिल्म चार्ज करती थी, जो कि आज के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ के आसपास होगा। तो फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ और किस्से श्रीदेवी के यहाँ मैं सुनाने आ जाऊंगा आपको। आप कहीं जाएगा नहीं, जाए तो हमें साथ ले लीजिएगा भाई, हम तो 24 घंटे सातों दिन अब आपके साथ हैं। बस एक ईयरफोन लगा कर रखिए और हमें सुनते जाइए अपने मोबाइल से भी। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर समर है आपके साथ, कीप लिसनिंग। एंड अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर अगर जरूर करें। आपको शो कैसा लग रहा है प्लीज प्लीज प्लीज हमें जरूर बताएं। स्टे कनेक्टेड।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
5: GGMart, your personal grocer.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। मैं हूं समर आपके साथ और आज मैं आपको किस्सा सुना रहा हूं श्रीदेवी जी का। वैसे मैंने जैसा कहा ना कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आकर हमें जरूर जरूर बताएगा, हमें अच्छा लगेगा भाई। आज हम श्रीदेवी जी की बात कर रहे हैं तो 92 में श्रीदेवी जी की एक सुपरहिट फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन साहब के साथ खुदा गवाह। बेनजीर का बेहद खूबसूरत कैरेक्टर श्रीदेवी ने प्ले किया था, बहुत खूबसूरती से प्ले किया था। हालांकि डबल रोल में थी इसमें, एक नागार्जुन के साथ और एक अमिताभ बच्चन साहब के साथ। तो यहां पर दो बड़े हीरो के साथ भी ये फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरूर पिट गई, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ये फिल्म बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन जनता जनार्दन होती है भाई, उन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन अगर आप ये देखेंगे अब तो ये फिल्म जबरदस्ती आप भी महसूस करेंगे। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म की जिसमें शुरू में ये थी ही नहीं, यानी फिल्म की शूटिंग लगभग आधी हो चुकी थी और श्रीदेवी उस फिल्म का हिस्सा थी ही नहीं। वो फिल्म थी लाडला। इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ रवीना टंडन और दिव्या भारती थे, लेकिन शूटिंग के बीच में ही दिव्या भारती की ट्रेजिक डेथ हो गई और फिर बाद में इस फिल्म में श्रीदेवी जी को कास्ट किया गया। वो सीन जो दिव्या भारती पर फिल्माए गए थे वो सब श्रीदेवी ने वापस शूट किए और फिर ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
2: लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा, इसका नशा रे बाबा।
1: लेकिन इस फिल्म से जुड़ा एक बड़ा ही अजीब किस्सा है। जब श्रीदेवी को कास्ट किया गया और जब दिव्या भारती के जो सीन रीशूट होने थे वो कर रहे थे, तो उस दौरान ये देखा गया कि श्रीदेवी कुछ डायलॉग्स को बोलने में दिक्कत महसूस कर रही है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। और यही प्रॉब्लम दिव्या भारती को भी हुई थी इन्हीं डायलॉग्स को बोलने में। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स बार बार हो रही थी तो फिर आखिर में डायरेक्टर को शूटिंग के बीच में हवन करवाना पड़ा। अब हमें ये नहीं पता है कि हवन के बाद ये डायलॉग ठीक से बोल लिए गए या डायलॉग ही बदल दिए गए, लेकिन ऐसा हुआ था। वेल, अब होता रहता है फिल्मों में ऐसा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आप सुनिए ये गाने और जल्द लौट कर आइए क्योंकि श्रीदेवी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। स्टे कनेक्टेड।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: They are fresh. They are hot.

चार्ट टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर लेजेंड्स, फिर से मैं, ये है आज की आखिरी मुलाकात। मैं हूँ समर आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं श्री की, श्री देवी की। 1997 में श्रीदेवी की एक और फिल्म आई जुदाई और ये एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। हालांकि यहाँ तक आते आते श्रीदेवी ने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया था क्योंकि कुछ ही वक्त पहले इसी दौरान उनके पिताजी की डेथ हुई थी और फिर उन्होंने 1996 में बोनी कपूर से शादी कर ली थी। तो कुल मिलाकर अब उन्होंने फिल्मों से दूरी बना रखी थी और जुदाई के बाद तो उन्होंने एक तरह से फिल्मों में काम करना बंद ही कर दिया था। अच्छा, जुदाई में इनके कैरेक्टर का नाम जानवी था, याद है आपको, और इसीलिए शायद इन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम भी जानवी ही रखा। और ये जो फिल्म थी जुदाई, ये अनिल कपूर साहब के बड़े भाई यानी बोनी कपूर साहब ने बनाई थी, श्रीदेवी जी के पति ने, और वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनको हर कोई जानता है, भाई मिस्टर इंडिया के प्रोड्यूसर भी वही थे। अच्छा, इसके अलावा एक और फिल्म थी जो बोनी कपूर साहब ने बनाई थी, अनिल कपूर इसमें हीरो थे, हमारा दिल आपके पास है। और इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे का जो कैरेक्टर नेम था खुशी, वो इतना इन्हें पसंद आया कि श्रीदेवी ने अपनी छोटी बेटी का नाम खुशी रखा। जुदाई फिल्म के बाद जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्मों से दूर हो गई, लेकिन 2012 में इन्होंने फिर से वापसी की इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से और ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म बनी। अच्छा, इसमें एक सीन है जिसमें माइकल जैक्सन की डांस का स्टेप करती है वो। दरअसल श्रीदेवी माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फैन थी और हम श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों 24 फरवरी 2018 को ये अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई हुई थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। कुछ देर पहले ही तो इनका एक वीडियो आया था जिसमें ये डांस कर रही थी भारत के साथ और फिर अचानक एक ऐसी खबर आई जिससे सारी दुनिया स्तब्ध रह गई, सन्न हो गई। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, कैसा भी हो सकता है। 24 फरवरी 2018 को दुबई में एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के चलते बाथटब में डूबकर इनकी मौत हो गई। किसी को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बहुत बड़ा फैन हूं श्रीदेवी का, तो मैं आपसे कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मैं आज भी यकीन नहीं कर पाता हूं कि वो हमारे बीच नहीं है। वेल, अपनी बेटी जानवी की पहली फिल्म को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी, उसे देखना चाहती थी पर वो देख नहीं पाई। और ये लॉस सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं बल्कि पूरे भारत का, या मैं कहूं कि पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों का जो अच्छे सिनेमा को और अच्छे एक्टर्स को देखना चाहते हैं फिल्मों में, उनका बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन एक और चीज, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि श्रीदेवी जैसे कलाकार कभी मरते नहीं है, कलाकार अपनी कला के साथ हमेशा जिंदा रहते हैं और श्रीदेवी भी आज हमारे दिलों में है और उनकी इज्जत हमेशा यूं ही होती रहेगी। सैल्यूट है आपको श्रीदेवी। वेल, फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मिलूंगा मैं एक और फनकार की कहानी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाइएगा और चाहत ऐसी फैलाइएगा कि लोग आपको याद रखें। मुस्कान बनकर किसी के चेहरे पर भी सज जाइएगा और याद मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है जमन, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो,
4: नॉट स्टॉप द म्यूजिक, रेबो सिंग इट।
5: नाचने का मन है
6: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
7: चेक इट आउट।
8: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें या ना दें, हमारी गाड़ी तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
3: Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives.

0: मोर्चे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना। रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से। कभी मेरे साथ
1: कोई रात गुजार। जोश में रहो। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
3: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर वी ब्रिंग देम बैक। एनकोर शोज बाय पॉपुलर डिमांड, रिलिव द म्यूजिक, द मोमेंट्स, द मैजिक। Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for encore show timings.
4: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
6: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
7: We don't

शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं

0: पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
2: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
3: Only on Radio Musty 24/7 Live. A part of Musty Media Network Singapore.
4: Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
5: पार्टी तो कभी से शुरू हुई है
6: पर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

वेलकम टू डियर मस्ती दिल से। जी हाँ, आप सभी का यहाँ पर आज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में स्वागत करते हुए बिल्कुल मैं इंतजार कर रही थी कि कब होगा वो वक्त शुरू। मैं आंत्रा यहाँ पर आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर। पता है, आज शो शुरू करते हुए ये एक थॉट जो है वो जहन में था कि हम अपने आप से जिस तरह बात करते हैं, क्या हम कभी किसी अपने से उस तरह बात करेंगे? Think about it. फ्रेंड से कोई गलती हो जाए तो हम

एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड सेल्फ कंपैशन। बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, जब लाइफ डिफिकल्ट हो तो खुद को भी वही काइंडनेस देना जो आप नेचुरली किसी अपने को देते हैं। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर गलती को जस्टिफाई कर दो। गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो, सीखो, करेक्ट करो, बस उस प्रोसेस में खुद के दुश्मन नहीं बन जाओ। बिकॉज समटाइम्स द पर्सन हु नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट इज यू। And on that thought, welcome everyone again to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. Antra bilkul yahan pe jud gayi hai aapke saath, and dheere dheere jo hai hamari Nupur and Renuka bhi aapke letters ke saath yahan pe judte hue jayenge, aur saath mein koi aur bhi judega. Wo janne ke liye hamare saath yun hi bane rahe, and let's start the silsila of hamare Dear Masti ke un chittiyon ka jo aap itni प्यार से और इतने ट्रस्ट के साथ हमें यहाँ पर भेजते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर हमारे साथ यू ही बने रहिए।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं अंशरा यहाँ पर आपके साथ। एंड यस, चलिए अपनी आज की पहली चिट्ठी की ओर जो है वो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डियर मस्ती, मैं एक 3 साल के बच्चे की मम्मी हूँ एंड ऑनेस्टली आई एम सो डन। घर, बच्चा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ अकेले ही कर रही हूँ। हम न्यूक्लियर फैमिली है और मेरे हस्बैंड को फ्रीक्वेंटली इंडिया जाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के पास। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट, बट इवेंचुअली एवरीथिंग हियर फॉल्स ऑन मी। अब ना पेशेंस बची है ना एनर्जी। कभी कभी बस मन करता है कि कहीं चली जाओ। नो किड, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नोबडी अराउंड मी, बस थोड़ी देर सांस ले लूं। और फिर गिल्ट होता है कि एक माँ होकर मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। Is all of this even worth it? Oh, okay. My dear listener, आपके लेटर की वो एक लाइन, बस कहीं जाकर सांस लेना चाहती हूँ। I completely felt it. Because sometimes that's exactly what overwhelm sounds like. Not that I don't love my child, I don't want my family. It's just that I am tired of being needed every single minute. और मुझे लगता है कि मदर्स के साथ हमने एक बहुत ही अनफेयर सी चीज नॉर्मलाइज कर दी है, and I'm sure that you would agree with me on this and a lot of other people who are tuned in at this point of time. कि माँ हो इतना तो करना पड़ेगा। Of course करना पड़ेगा, but कितना और कितने टाइम तक बिना किसी ब्रेक के। रिसर्च देखी मैंने आपका लेटर पढ़ने के बाद, WHO के अकॉर्डिंग चाइल्ड बर्थ के बाद अप टू 1 in 5 वुमेन पोस्टनेटल डिप्रेशन या एंजाइटी एक्सपीरियंस करती हैं। और रिसर्च बार बार ये भी दिखा रही है कि पार्टनर, फैमिली और फ्रेंड्स से इनसफिशियंट सपोर्ट डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के हायर रिस्क से एसोसिएटेड है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ है अभी। Of course, I'm not a doctor and एक लेटर पढ़कर ऐसा कहना ठीक भी नहीं होगा। But what I'm saying is that मम्मी यानी मदर्स के मेंटल लोड को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज पेरेंटिंग सिर्फ डायपर चेंज करना, खाना बनाना और स्कूल ड्रॉप करना तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑल द टाइम, प्लानिंग, वॉचिंग, वरिंग, डिसाइडिंग, बींग अवेलेबल 24/7। और जब दूसरा पेरेंट फिजिकली अवेलेबल नहीं है, वो वर्कलोड और भी हैवी फील हो सकता है। इसीलिए अगर कभी किसी मम्मी के मुंह से निकले कि मुझे बस कुछ दिन अकेला रहना है, तो शायद इमीडिएटली ये कहने के बजाय कि भाई कैसी माँ हो तुम, एक बार जरूर पूछना चाहिए नहीं कि ओह माय गॉड शी इज रियली टायर्ड, बिकॉज समटाइम्स शी डजंट नीड जजमेंट, शी नीड समबडी टू टेक द चाइल्ड एंड से तू जा मैं हूं, थोड़ी देर सांस ले ले। सो माय डियर लिसनर, आपका सवाल था इज इट ऑल वर्थ इट, और आपकी सिचुएशन में एक्चुअली क्या चेंज किया जा सकता है। आई एम स्टिल थिंकिंग एंड आई want to give an honest answer to you, so I will come back after this musical break and let you know. All right, you stay tuned to Dear Masti, Dil Se.

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। थोड़ी देर पहले हमारे एक डियर लिसनर का लेटर आया था, मैं हूं अनुराग के साथ, और उन्होंने लिखा था दैट आई एम अ मॉम ऑफ अ 3-year-old बॉय। उनकी एक न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड को फ्रीक्वेंटली इंडिया जाना पड़ता है पेरेंट्स के पास, और पीछे घर, बच्चा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेंटल लोड, सब कुछ उनके शोल्डर्स पर आ जाता है। एंड बड़ी ही ऑनेस्टली शी रोट to us that I have no patience, no energy, I just want to go somewhere alone and breathe. Is all of this even worth it? So my dear listener, मैं आपके letter का answer एक सवाल से देना चाहती हूँ। आखिरी बार आपने बिना किसी की responsibility दिए सिर्फ अपने आप के लिए कुछ कब किया था? And yes, please, grocery shopping doesn't count in that. बच्चा स्कूल गया और आपने लॉन्ड्री कर ली, doesn't count. बच्चा सो गया और आपने किचन क्लीन कर दिया, वो भी ब्रेक नहीं है। I mean, genuinely, सिर्फ आप। पता है मुझे क्या लगता है कि अक्सर इन सिचुएशंस में जब पढ़ते हैं तो लोग भागना शुरू कर देते हैं अपनी इस सिचुएशन से। आपको थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑफ ड्यूटी होना है, एंड दैट्स ऑल। एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप अपने हस्बैंड की सिचुएशन अंडरस्टैंड करती हैं, एंड दैट्स वंडरफुल। उनके पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन माय डियर लिसनर, अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट ऑलवेज बी वन वे, राइट? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, तो आपका टायर्ड होना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले तो हस्बैंड के साथ हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन, नॉट व्हेन यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, किसी रिलेटिवली काम वर्क पर। इन कॉन्वर्सेशन की तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो, डोंट स्टार्ट विद दैट। मे बी समथिंग लाइक दिस दैट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट कोपिंग वेल विद द करंट अरेंजमेंट। हमें मिलकर इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एंड देन गेट स्पेसिफिक, यू नो, कि बेड टाइम यू कैन टेक ओवर समथिंग, वीकेंड मॉर्निंग्स यू कैन गिव मी सम टाइम, बाथ टाइम, ग्रोसरीज। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जो आपको सुपरवाइज ना करनी पड़े। बिकॉज अगर काम उन्होंने किया और इंस्ट्रक्शंस, रिमाइंडर्स, प्लानिंग सब आपने की, तो मेंटल लोड अभी भी आपका उतना ही है, देयर इज नो डिफरेंस। और जब वो इंडिया जाते हैं, talk about, let's look out for some help, cleaner, babysitter for a few hours, trusted friend or family member, kaun hai, kya hai, even if it is once a week, help luxury nahi hoti jab aap drowning sa feel kar rahe ho, and ye ek chota sa non-negotiable time apne liye zarur zarur rakhiye, maybe Saturday ko 2 ghante, just go out, have coffee, catch up with your friends, get your hair done, go to salon, sit in a park, ya होटल बुक करके भी भागने की जरूरत नहीं है। पहले आई थिंक जस्ट 2 घंटे से शुरू करिए, एंड उस वक्त ये गिल्ट में नहीं आए कि मेरा बच्चा पता नहीं कैसे क्या कर रहा होगा, ना ही ये सिखाने की अपने हस्बैंड को कोशिश करिए कि भाई तुमने ये ठीक नहीं किया होगा या नहीं किया, एंड ऑल दोस थिंग्स। ही इज एन अडल्ट, ही कैन टेक केयर, ही इज एज मच पेरेंट एज यू आर। योर चाइल्ड इज स्लेफ एंड यू आर अलाउड टू रेस्ट। टेल योर सेल्फ दैट एंड गो एंड टेक दैट ब्रेक। You really need that breather, and you should and you must take that breather. Just talk it out. Very, very, very important. I hope really, really it helps. And if it does, and if you really, you know, pehli jab aap rahat ki saans lo aur aapko agar hamari yaad aaye, please feel free to write to us on Dear Masti Dil Se.

You know what I absolutely love about this show? That is the music. जी हाँ, जो गाने चलते हैं, जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं और जो स्माइल लेकर आते हैं हम सबकी शक्ल पे. Well, there's nothing better than that, right? Hello, hello. सही पहचाना आपने. मेरा नाम रेणुका है और अब मेरी बारी आ चुकी है ऑन डियर मस्ती दिल से. डियर मस्ती दिल से. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. बिल्कुल. और इस अनजाने इंसान की बारी जो आई है तो इसको चिट्ठी भी बहुत भारी आई है. Hi Renuka, I need your advice because something happened recently that's really upset me. I'm a part of a close group of friends. One of them asked me, did everyone else go out for drinks yesterday? Was I the only one who wasn't invited? I honestly didn't think much of it. I simply said, I think the organizer invited everyone except you, maybe because you don't drink. There was no gossip, no bad intention. I was just answering the question I was asked. लेकिन अगले दिन इसने कन्फ्रंट कर लिया ऑर्गेनाइजर को और पूछा कि किसने बताया. जब सबने पूछा ये बात तो मेरा नाम आ गया एंड सम ऑफ द ग्रुप नाउ इज कॉलिंग मी अ स्निच. ऑनेस्टली इफ आई हैड नोन माय सिंपल आंसर वुड क्रिएट सो मच ड्रामा आई वुड हैव नेवर सेड एनीथिंग. अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है अराउंड एवरीवन. डिड आई डू समथिंग रॉन्ग और वाज आई जस्ट बीइंग ऑनेस्ट? दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग. देखिए ये सब तो चलता रहता है लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि भाई दोस्ती आसानी से नहीं मिलती और सच्ची दोस्ती तो आज के ज़माने में वैसे भी बड़ी ही मुश्किल से मिलती है. तो चलो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और वापस आके आपकी इस परेशानी का हल आपको बताते हैं. खेखे की आवाज़ में शायद आपको अच्छा लगेगा. Let's take a short musical break and I'll be back very soon. Radio Masti 24/7 पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
7: Good morning.
8: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका की बारी चल रही है और थोड़ी देर पहले सवाल कुछ ऐसा आया था कि दोस्ती में एक दोस्त ने दूसरे से पूछा कि कल मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, तो उसने बता दिया कि शायद इसलिए क्योंकि यू डोंट ड्रिंक। लेकिन उस इंसान ने जाकर इमोशनल होके ऑर्गेनाइजर से बात कर ली, ऑर्गेनाइजर ने पूछा कि तुम्हें किसने बताया, और इस इंसान का नाम आ गया। और अब इस इंसान को कुछ लोग उस ग्रुप में शक की निगाहों से देख रहे हैं कि क्या तुमने लड़ाई कराने की कोशिश करी थी।
9: नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से।
8: भाई ये बात तो मानने की है कि इधर के उधर करने के इल्जाम में कई बार सच और कई बार अननेसेसरली दोस्त फंस ही जाते हैं। Many of us have found ourselves in this situation, caught in the middle without ever wanting to be there, right? First of all, from what you've shared, ऐसा तो लग नहीं रहा कि आप कोशिश कर रहे थे to create trouble. आपने एक सवाल का जवाब honestly दिया, आपकी intention was not to hurt anyone. लेकिन intention बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ. Life also teaches us something else. Every truth does not need an immediate answer. कभी कभी लोग हमसे सवाल पूछते हैं when what they really want is reassurance. और friendships में there are moments जब एक सिंपल सा I'm not really sure, maybe you should ask them directly. बस यही एक लाइन बोलना can save a lot of unnecessary misunderstanding. और अगर आपको लोग कह रहे हैं that you're a snitch, don't spend too much time spending अपनी energy उस पे to defend yourself, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका दिल was in the right space, बस ये कह दीजिए I wasn't trying to create a problem, I answered honestly and I'm sorry it led to a misunderstanding. नोटिस कीजिए, आप apologize कर रहे हैं for the situation, not for being an honest person. Remember that. And maybe इस पूरे के पूरी सिचुएशन में हम सब के लिए एक छोटा सा लेसन है। इफ वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट समवन, समटाइम्स द काइंडेस्ट थिंग टू डू इज टू आस्क दैट पर्सन डायरेक्टली। फ्रेंड्स के थ्रू मत पूछो, अजम्पशंस मत करो, बिकॉज द मोर पीपल अ कॉन्वर्सेशन पासेस थ्रू द फर्दर इट मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रूथ। वो हमारी गेम होती है ना चाइनीज विस्पर्स की, कि बस एक को कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा और एंड तक पहुंचते पहुंचते बात का मीनिंग ही बदल जाता है। हर बात सच बोलना जरूरी है, लेकिन कब, कैसे और किस से कहनी है उसकी समझ भी उतनी ही जरूरी है। समझे कि नहीं? छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी बैक लेटर, जब मुझे ये लोग आने देंगे बैक टू द शो विद माय क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

काफी ज्यादा सोचने लगी हूँ। रिजल्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चुप रहती हूँ और अब लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई ओपिनियन ही नहीं होता है। मैं बोलूं तो टू मच, ना बोलूं तो अपेरेंटली मेरी कोई वॉइस नहीं। मैं करूं तो क्या करूं? हाय है बढ़ो, अगली बार बोलने से पहले दिमाग में फिल्टर आपने लगा लिया, ये बोलूंगी तो बुरा तो नहीं लगेगा। फिर एक और फिल्टर आया, कहीं फिर से ब्लंट ना हो जाओ। और धीरे धीरे बोलने से इजियर चुप रहना लगने लगा। बट डियर लिसनर, मैं आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ कि दुनिया गलत है और आप बिल्कुल मत बदलिए एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अगर डिफरेंट पीपल डिफरेंट सिचुएशंस में आपको सेम फीडबैक दे रहे हैं तो उसे कम्प्लीटली डिसमिस कर देना भी उतना वाइज नहीं होगा। फीडबैक को इंसल्ट नहीं इंफॉर्मेशन समझकर अगर आप उसको देखें, आप अपने आप से पूछिए क्या प्रॉब्लम मेरी बात में है या मेरी बात करने के तरीके में। बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बुरी क्वालिटी नहीं होती है। एक्चुअली मुझे पर्सनली स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग काफी सही लगते हैं, कम से कम मुझे गेसिंग गेम तो उनके साथ बिल्कुल नहीं खेलना पड़ता। लेकिन ऑनेस्टी और हार्शनेस में डिफरेंस होता है। आपको अपनी ऑनेस्टी लूज नहीं करनी है, बस डिलीवरी पे शायद थोड़ा सा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगा कि बजाय मुझे इसमें कुछ कंसर्न सा दिख रहा है, डू यू वॉन्ट टू नो, या तुम गलत कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे बजाय मैं शायद I just look at it in a different way. Thought वही है, opinion वही है, बस packaging थोड़ी सी softer हो गई है। और एक छोटी सी शायद trick आप try कर सकते हो कि just check with yourself बोलने से पहले, is it true? Is it necessary? And can I say it in a better way? तीनों का आंसर हाँ है, then say it. उसके बाद सामने वाले की हर रिएक्शन को कंट्रोल करना आपका काम नहीं है। So please, दूसरों को कंफर्टेबल रखने के चक्कर में अपनी आवाज कंप्लीटली बंद नहीं करना है आपको, बिकॉज वो सोल्यूशन नहीं है। आपको लेस ऑफ योर सेल्फ नहीं बनना, आपको बस अपने आप को थोड़ा मोर अवेयर वर्जन बनाना है। और अगली बार कोई कहे कि तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है क्या, तो मन में जरूर कहना कि हाँ भाई, अभी तो तुम लोगों ने ही म्यूट पर डाला हुआ है। Sometimes it is such a fun thing to do. Just keep quiet and watch the whole drama unfold right in front of your eyes. And then say कि okay, it's okay. I think it is better this way. Nay, I'm sure you would have felt like that at some point of time. Dear listener, I hope this helps. Radio Masti 24/7 live, but stay tuned kyunki hum wapas aane wale hain bas kuch hi der mein.

0: बेटा तो
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस।

मस्ती दिल से, यही है इस शो का नाम। मैं हूँ अंशरा ऑन रेडियो मस्ती 24/7। वेल, अगली चिट्ठी को बिल्कुल पढ़ते हुए, ये चिट्ठी कहती है, डियर मस्ती, मैंने अपने एक कलीग को काफी बार ऑफिस में दूसरों के जोक्स का टारगेट बनते देखा है। मैं उसके क्लोज भी नहीं हूँ, बट ऑनेस्टली अब देखकर अनकंफर्टेबल सा लगता है मुझे। मेरा मन करता है उससे जाकर कहूँ कि व्हाई डू यू कीप टेकिंग इट, एक बार बोलो कि यू डोंट लाइक इट एंड आस्क देम टू स्टॉप। बट देन आई वंडर, एम आई इंटरफेरिंग इन समथिंग दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस, इट्स नॉट माय सर्कस, बट डज दैट मीन आई शुड काइंड ऑफ क्लोज माय आईज व्हेन समथिंग क्लियरली फील्स ऑफ। माय डियर लिसनर, किसी चीज का हमारी प्रॉब्लम ना होना और किसी चीज का गलत लगना, क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? दैट्स व्हाट आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग राइट नाउ। और मुझे लगता है यहाँ पहले एक छोटा सा डिस्टिंक्शन भी है। हम फ्रेंड्स के बीच ना एक दूसरे की टांग हम लोग खींचते हैं, मजाक करते हैं, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन अगर जोक बार बार एक ही इंसान पर हो रहा हो और वो अनकंफर्टेबल दिख रहा है, उसकी डिग्निटी हर्ट हो रही है और बाकी सब उसकी डिस्कम्फर्ट को एंटरटेनमेंट बना रहे हैं, देन मे बी इट्स नॉट फनी एनी मोर। Having said that, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सीधा जाकर उनसे बोल दो कि तू स्टैंड क्यों नहीं लेते, give it back to them, because हमें right now ये पता ही नहीं है कि वो respond क्यों नहीं कर रहे हैं, right? Maybe confrontation is something difficult for that person. Maybe office dynamics जो है उसमें involved है. Maybe वो freeze कर जाते हैं, या हो सकता है कि वो situation आपसे बिल्कुल differently ही देख रहे हो. So don't decide for him what he should feel. Ask him what he feels. अगर मैं आपकी जगह होती तो मे बी यू नो कभी चाय पे निकल गए या फिर कभी कॉफी ब्रेक पे ऐसे निकले कभी साथ में उनके, तो यू नो, हे आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आई हैव नोटिस्ड सम ऑफ द जोक्स पीपल मेक अराउंड यू, आई जस्ट वांटेड टू चेक क्विकली, आर यू ओके विद ऑल ऑफ दैट? उसके बाद बस लिसन टू वॉट ही सेज। अगर वो कहे कि अरे नहीं यार हम तो ऐसे मजाक करते हैं, फाइन, You have checked in, respect his answer. लेकिन अगर वो कहे कि actually मुझे अच्छा नहीं लगता, but I don't know what to do, then maybe you can say that you don't have to laugh along just to keep things comfortable. You are allowed to say, guys, enough. I don't find this funny anymore. और अगर behavior genuinely bullying, humiliating या persistent workplace harassment जैसा हो, then rather than telling him to give it back, encourage him to document what's happening and consider speaking to any appropriate manager या फिर HR channel. And dear listener, एक और चीज जो आपके letter में, I really found it good that आपको बुरा लगा और आपने notice किया. Please इस instinct को lose कभी मत करना. हमें ना हर battle में jump नहीं करना है, true. हर किसी को rescue भी नहीं करना है, very true. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम uncomfortable चीज देख कर कह दे भाई not my clown, not my circus, not my problem. Sometimes kindness is not rescuing someone. Sometimes kindness is simply going up to them and quietly asking, hey, are you okay? और फिर उन्हें decide करने देना कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, है ना? Hope this helps. Stay tuned to Radio Masti 24/7 live. Dear Masti, दिल से, जी हाँ, यही है इस शो का नाम।

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

एंड आई एम बैक रेडियो मस्ती 24/7 येट अगेन. एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल लेके वापस आई हूँ, लेकिन आई एम श्योर आप से बहुत से लोग इस सवाल के साथ में बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे. डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. Hi Masti, I recently lost my job. Officially, it was called a restructuring. But deep inside, मुझे मालूम है कि मेरा reporting manager, उसको मैं कभी पसंद नहीं था. There was favoritism, there was bias, and no matter how hard I worked, I always felt I was fighting an uphill battle. Eventually, I was asked to leave. What hurt me even more wasn't losing my job, it was losing the people I thought were my friends. These were colleagues I had helped countless times. I stayed back late for them, covered for them, supported them during difficult times. Lekin mere chhodne ke baad, silence. Very few even sent a message. No one asked how I was coping. No one stood by me. It made me question everything. Were they ever really my friends? How do I stop feeling so hurt and disappointed? भाई ये वाला सवाल भी मैं कहूंगी कि feeling abandoned by people जो आपको लग रहा था कि आपके दोस्त हैं, retrenchment, restructuring, office politics के बीच में, तो आप बहुत भोले हैं, इतना ही कहूंगी मैं. लेकिन please don't feel hurt with what you have been through or what I'm saying right now. फिलहाल के लिए एक छोटा सा यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, इसीलिए ये वाला गाना आपके लिए. आप जैसे और हम सब जैसे बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीखते हैं गलतियां करके, या जिंदगी के कुछ मोड़ पर हमें सिखाया जाता है. स्टे ट्यून्ड, वापस आती हूँ बहुत ही जल्द.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शन, बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: They are fresh. They are hot.
4: They are happening.
3: From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, musty top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart bus.

वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है रेडियो मस्ती दिल से. जी हाँ, वही वाला शो जहाँ पर आप ही की चिट्ठियाँ इस पूरे के पूरे शो को बनाती हैं और साथ ही में हम सबको एहसास दिलाती हैं कि कभी कभी रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको बेहतरीन समझ लेता है बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों से जो आपके आस पास रहते हैं. Dear Masti, दिल से. Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. No judgment and definitely हमें आपका नाम भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. Coming back to the question, जी हाँ, आपने कुछ देर पहले बताया कि रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आपको दफ्तर से निकाला गया, ऑफिस से बोला गया कि आपकी जॉब अब नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पर क्या होता है, बॉसेस का बहुत रोल होता है और वहाँ पर बायस और वहाँ बहुत कुछ. एनीवे, लूजिंग अ जॉब इज पेनफुल बट लूजिंग योर फेथ इन पीपल कैन हर्ट इवन मोर. When we are working together every day, it's easy to believe we are one big family. We have lunch together, celebrate birthdays, share jokes, help each other through stressful projects. And then, एक दिन ऐसा होता है that someone leaves. Life moves on, meetings continue, new projects begin, और suddenly आपका जो फोन है ना, बिल्कुल चुप हो जाता है. Does that mean कि ये relationships fake थे? Not really. कभी कभी जो लोग हैं ना साइलेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू से. समटाइम्स दे आर अफ्रेड दैट सपोर्टिंग यू ओपनली माइट अफेक्ट देयर ओन पोजिशन. और हाँ, समटाइम्स दे वर सिंपली कॉलीग्स, नॉट लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. एक बहुत ही मुश्किल लेसन, बहुत ही हार्डेस्ट लेसन ऑफ लाइफ इज नॉट एवरी वन हु वॉक्स बिसाइड्स यू इज वॉकिंग विद यू. सम पीपल आर कंपेरिजन्स फॉर अ companions for a season, and a workplace can give you wonderful memories, but it shouldn't become the only place where your identity or your friendships live. इसीलिए किसी और का साइलेंस आपका वर्थ डिसाइड करे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लोग जो वाकई आपके लिए केयर करते हैं ना, वो ढूंढ लेंगे आपको इवन आफ्टर यू लेफ्ट द ऑफिस. एंड दोज हु डोंट हैव सिंपली शोन यू वेयर द रिलेशनशिप बिगन एंड वेयर इट एंडेड. एक दिन, बस कुछ ही समय के बाद आप रियलाइज करेंगे, यू लुक बैक एंड यू विल से लूजिंग दैट जॉब डिडंट जस्ट क्रिएट स्पेस फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इट रिवील्ड हु जेन्युइनली बिलोंग्स इन योर लाइफ. और कभी कभी यही जिंदगी की सबसे बड़ी प्रमोशन होती है. कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है सिर्फ इसीलिए नहीं कि नया दरवाजा खुले, बल्कि इसलिए भी कि हमें पता चले कौन सच में हमारे साथ चल रहा है. आप चल रहे हैं ना मेरे साथ? चलिए. बी टफ बिकॉज लाइफ विल मेक यू टफ वन वे और द अदर. स्टे ट्यून्ड.

0: shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
0: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट

0: नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से। मैं हूं आपकी अंतरा यहां पर आपके साथ। अब डियर मस्ती जो है वो एक ऐसी जगह है जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ की, रियल इमोशंस की, रिलेशनशिप्स की, मेंटल वेलबींग की और उन फीलिंग्स की भी जो कभी कभी दिल में तो बहुत होती हैं लेकिन कहने के लिए कोई नहीं मिलता। बिकॉज समटाइम्स वी डोंट रियली नीड एडवाइस और सॉल्यूशंस, बस कोई चाहिए जो बिना जज किए हमें सुन सके। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही इंसान जुड़ रहे हैं डियर मस्ती इस शो पर, जिनका काम भी इसी थॉट से कनेक्ट करता है। अ वेरी वार्म वेलकम टू श्रीधर, फाउंडर ऑफ संघर्ष साथी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका एम है लोगों तक पहुंचना, उनकी बातें सुनना और उनके स्ट्रगल्स में उन्हें वो लिसनिंग ईयर देना जो शायद उस वक्त उन्हें कहीं और ना मिल रहा हो। एंड आई थिंक यही वो ब्यूटीफुल कॉमन थ्रेड है जो संघर्ष साथी और डियर मस्ती दिल से को कनेक्ट करता है। पीपल शुड हैव अ स्पेस वेयर दे कैन टॉक एंड फील हर्ड। So Shridhar, a very warm welcome to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. काफी अच्छा लग रहा है आज के दिन आपसे जुड़कर यहाँ पर।
1: Hi Antara, very nice to be a part of this initiative. Wonderful to see you all here and to all those audiences who are listening. This is a great initiative started by Radio Masti. Glad to be a part of it.
0: Hi, so Shridhar, tell us a little bit more about what Sangharsh Sathi, क्या है, कौन है, कैसे बना? How did it all start? Tell us more about it.
1: It's a very touching initiative that I started. And the reason behind that was when my 18-year-old nephew jumped down the 84th floor. And I was thinking, yeah, there's such a long life ahead. Then why did this happen? That was the first instant. Then, dusra jab one of my friend's daughter, who was 17 years old, right girl, with such a soft natured heart, she would go out to help everyone and suddenly one day she's gone. The third instance was my own friend in my first PUC. Sab kuch chal raha tha, itni bubbly thi, so much comfort I would feel around her, and all of a sudden one day she's gone. All these people were happy on the outside, but what really made them take this decision was very surprising. So I thought, kahin pe these people are facing some kind of inner struggles, एक ऐसा संघर्ष these people are facing, which may be normal for somebody who has everything. And 10 years back, I thought, okay, let us start somewhere, you know. So, थोड़ा थोड़ा videos कर रहा था, it was just going on. And एक दिन अचानक एक दिन जैसे मैं भजन practice भजन करता हूँ तो भजन practice के लिए जा रहा था तो cab में सो गया. And एक ऐसा vision आया कि the girl who was with me when I was in my first PUC, my friend, it is like suddenly I saw her and bus ek do hi shabd bola usne, usne bola thank you and she just disappeared. Phir ek aisa signal aaya and itna phut phut ke roya ki main socha theek hai, let us get it started somehow, mujhe pata nahi kaise hoga ye sab, and let us just get it started somehow. And that is where Sangharsh Sathi came out.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो

0: यू नो व्हाट, आप चाहें तो पूरा आसमान आपके पास खाली पड़ा है, और आप ना चाहें तो आप जहां पर सेटिस्फाइड है ना, वहीं पर रहिए। लाइफ में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। डियर मसीह दिल से शो पर मैं आरजे नुपड़ाव के साथ। रिश्तों में एक बाउंड्री बनाना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता बहुत है कि हाँ, मैं जो करता हूँ वो, या मैं जो करती हूँ वो सही थॉट से करती हूँ, बट बाय द टाइम आपके सेकेंड थॉट वाला जो मन है ना, वो ये कह रहा है कि नहीं, तुमने आज किया है जो गलत किया है, तो उसको भी सुना कीजिए। इतने जिद्दी होने से भी कोई फायदा नहीं है। अंजी, डियर मसी दिल से शो पर मेरे हाथों में जो लेटर आया हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है कि हाय डियर मस्ती, आई एम अ हैप्पी मैरिड पर्सन, बट स्टिल इन माई डेली लाइफ, जब मैं MRT से, टैक्सी से, या ऑफिस से, वर्क स्पेस से कहीं भी ट्रैवल करती हूँ ना, तो मुझे बहुत जल्दी सामने वाले शख्स के ऊपर क्रश हो जाता है, और वो चेहरा मेरे जहन में रह जाता है। तो मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? चलो ठीक है, इन्होंने जो मुझे लेटर भेजा है ना, इनकी जो क्रश की डेफिनेशन है ना, वो बहुत बड़ी है। मतलब इतनी जल्दी किसी पर दिल आ जाना, ये सही बात है या गलत बात है, आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप मुझे जब तक बताएंगे तब तक मैं थोड़ी सी देर में गानों के बाद वापसी करूंगी।
1: कैसे बताए तुझको चाहे यारा, बताना पाए।
0: बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत गाने डियर मस्ती दिल से शो पर, कमिंग अप इन अ शॉर्ट वाइल विद द आंसर, डोंट गो एनीवेयर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो सही है या गलत है, या आपका मन भी आपको नहीं बता पा रहा है। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुराव के साथ, और मुझे लगता है कि जब आपको खुद के थॉट्स पर क्वेश्चन मार्क आने लगे तो किसी और से पूछ ही लेना चाहिए। एंड स्पेशली डियर मस्ती दिल से शो पर हम यहाँ पे आपको बहुत ही वो कहते हैं ना प्रिवेसी के साथ, बिना आपका नाम बताए सारे डिस्कशंस कर जाते हैं, और शायद इसी वजह से इतने सारे सवाल हमारे पास आ जाते हैं। तो थोड़ी देर पहले मेरे पास एक सवाल आया जिसमें लेटर में लिखा था, हेलो डियर मस्ती, आई एम अ वेरी हैप्पी मैरिड पर्सन, बट MRT ऑफिस या वर्कआउट स्पेस जहां भी मैं जाती हूँ मुझे लोगों के ऊपर क्रश आ जाता है, व्हाट शुड आई डू। वैसे तो मैं आपको बोलूंगी कि क्रश अश मत करो यार, शादीशुदा इंसान हूँ, बट एक पॉजिटिव चीज बताती हूँ, ये जो क्रश है ये आपको कुछ गलत करने को तो मजबूर कर नहीं रहा है कि आप सामने वाले को कमिटमेंट देकर आ जाओ कि मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो बस एक मन का थॉट है। तो मेक इट लाइक अ सुपर पावर। हाँ जी, जब आप MRT से किसी बंदे पर क्रश करते हुए एक सफर से दूसरी सफर तक जा रहे हो, एक लंबा रास्ता तय कर रहे हो, तो आपका रास्ता कितनी जल्दी कट रहा है यार, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आधा घंटा बोरिंग सा कहाँ निकल गया। राइट, आपके मेंटल हेल्थ को भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा वो। इवन आपका वर्कआउट स्पेस, वहां पर अगर आपका किसी पर क्रश आ रहा है तो इसी बहाने आप डेली बेसिस पे जिम तो जाओगी ना। हाँ और भी बहुत सारी जगह जहां पे आपको कोई ना कोई शख्स पसंद आ जा रहा है और आप वहां पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रही हो, इसको पॉजिटिव वे में लेना शुरू करो। पर हाँ, ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि ये जो क्रश वाली डेफिनेशन है ना, ये क्रश वाली ही रहे, हम इससे अपने पुराने रिश्ते क्रश ना कर दें यार। डियर मस्ती दिल से शो पर

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

आज का शो आपको कैसा लगा? अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स आरजे अंतरा और नूपुर और साथ ही में मैं रेणुका, आपने आज एक नई आवाज भी सुनी, राइट? पीपल हु वर्क ऑन द ग्राउंड क्लोजर टू रियलिटी, उनको भी अपने शो के साथ जोड़कर श्रीधर के रूप में हमें बहुत अच्छा लगा। अ वेरी गुड इवनिंग, बट बिफोर आई गो, नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स, डियर मस्ती, दिल से। तो चलिए, आज की चिट्ठियों ने एक बार और एक बात याद दिला दी। इंसान होना बहुत सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। कभी हम अपने दिल को समझने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरों के बिहेवियर को, और कभी हम खुद से ही सवाल पूछते रह जाते हैं, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, लोग ऐसे क्यों बदल गए, मैं और अच्छा क्या कर सकता था। शायद हर सवाल का परफेक्ट जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हर बार जब हम रुक कर सोचते हैं, खुद को ऑनेस्टली देखते हैं और थोड़ा सा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तब जिंदगी हमें धीरे धीरे बदल देती है। आज अगर किसी लेटर ने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया या सोचने पर मजबूर किया, तो शायद वही उसका पर्पस था। बिकॉज ग्रोथ बिगिंस नॉट व्हेन वी ऑल हैव ऑल द आंसर्स, बट व्हेन वी आर विलिंग टू आस्क आवरसेल्व्स द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर मेकिंग डियर मस्ती दिल से मोर देन जस्ट अ रेडियो शो। हर हफ्ते आपका ट्रस्ट आपकी कहानियों के साथ हमारे पे, योर फियर्स, योर होप्स, और कभी कभी अपनी वो बातें जो आपने शायद किसी और से कभी नहीं कही। कीप राइटिंग टू अस, बिकॉज समवेयर योर लेटर मे बिकम समवन एल्सेस स्ट्रेंथ। मैं हूं रेणुका और ये डियर मस्ती दिल से। अगले ट्यूजडे तक बी जेंटल विद अदर्स, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और याद रखिए, दिल को समझने की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। गुड नाइट, एंड ऑफ कोर्स हमारा ऑनकोर सुनना मत भूलेगा थर्सडे रात को 9 बजे। लेकिन वैसे हम आपको मिलेंगे नए सवालों के साथ अगले ट्यूसडे। टेक गुड केयर, बाय फॉर नाउ।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। देखो मियां, हमें इतनी सी मैथ्स आती है, अरे हमको नहीं पहचाने। समर, मिलते हैं आपसे रेडियो मस्ती पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं लौट आया हूँ। समर है मेरा नाम, दोनों भाई फैला कर रहा हूँ आपको सलाम। सलाम दोनों भाई फैला कर थोड़ी करते हैं, ये अपन का स्टाइल है। तो गेम छो सिंगापुर सारू छे, अग्घा सिंगापुर मारू छे। ले आया हूँ आपके लिए लेजेंड्स अचीवर सीरीज पर एक और मस्त एपिसोड। मस्त इसलिए क्योंकि रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर है, जो आपको मस्ती दे रहा है 2009 से लगातार। चला तनक हमका बताई, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 क्या होता है? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 क्या का, थोड़ा इजी करें। ओके, तो बताइए 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्या होता है? ये मुश्किल है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्या हुआ, ये बता दीजिए। मुझे मालूम है आपको आता है, लेकिन मुझे नहीं पता था। हाँ, 2×2=4 होता है, ये आता है जरूर, और सच कहूँ तो वो अच्छा है। बचपन में माँ ने कविता सुनाकर 10 तक गिनती सिखा दी थी, वरना इतनी भी गणित हमको कहाँ आ पाती। लेकिन यह माँ की याद आ गई उनकी कविता की, तो वो अब मैं सुना देता हूँ आपको। एक था राजा का बेटा, 2 दिन से बिस्तर पर लेटा। 3 महात्मा सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए। 5 मिनट में गर्म कराई, 6-6 घंटे बाद पिलाई। 7 दिन में नैना खोले, 8वें दिन मुंह से बोले, 9वें दिन में

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगलू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से
4: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: मानव कंप्यूटर और मेंटल कैलकुलेटर जैसे नाम से मशहूर इंडिया से मशहूर भारतीय गणितज्ञ शकुंतला देवी जी हैं आज हमारी लेजेंड। वेलकम बैक, मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स के अचीवर सीरीज। एक कन्नड़ ब्राह्मण फैमिली में आपका जन्म हुआ साल 1929 में बेंगलोर में। काफी गरीब फैमिली थी इनकी। पिता सर्कस में काम किया करते थे, वो रिंग मास्टर थे। साथ ही रस्सी से कूदना, ऊपर हवा में झूलना सभी करतब दिखाया करते थे। मगर इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपनी बेटी को स्कूल भी भेज सकें, जबकि फीस उस वक्त महज 2 रुपए थी। रहने को भी कोई अच्छा पक्का घर नहीं था, बल्कि कच्ची बस्ती में रहा करते थे। करना तो वो बहुत कुछ चाहते थे, वो अपना घर छोड़कर आए थे। वो सिर्फ 3 साल की थी तभी उनकी गणित की संख्या और अंकों के साथ दोस्ती हो गई, और इस बात को उनके फादर ने नोट कर लिया। वो सर्कस से आकर उनके साथ खेला करते, ताश का खेल खेला करते, मैजिक ट्रिक्स दिखाते, और नन्ही शकुंतला झट से उनको पकड़ लेती, धीरे धीरे उन्हीं को मात देने लगी। पिताजी को लगता बेईमानी तो नहीं करती, पर इतना नन्ना बच्चा तो इस शब्द के मायने तक नहीं जानता। उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की कि वो उन्हें हरा कैसे रही है। उनको जानकर यह हैरत हुई कि उनकी बेटी की मेमोरी इतनी तेज है कि उन्होंने कार्ड नंबर और सीक्वेंस को याद कर लिया पहले राउंड में। अगले राउंड्स में वो उस सीक्वेंस को गेस कर लेती, उसी के आधार पर फिर वो कार्ड पिक करती जो उनको जिता देता। न सिर्फ कार्ड्स का खेल बल्कि वक्त के साथ वो मैथ्स के सवाल करने लग गईं। आस पड़ोस में कोई बच्चा होमवर्क कर रहा होता तो उसके गणित के सारे सवाल हल कर देती, जबकि वो स्कूल तक नहीं जाती थी। पिता को समझ आ गया था कि उनकी बेटी के भीतर कोई इनबिल्ट शक्ति है मेमोराइज करने की। मुझे तो ये कहते हुए लग रहा है कि उनके भीतर कोई सॉफ्टवेयर था मैथ्स का। सच में उस दौर में जब ना कैलकुलेटर हुआ करते थे, कंप्यूटर का तो सवाल ही नहीं उठता था, तो वो ऐसे कैसे हल कर लेते थे सवालों को पल भर में। कोई था ना सॉफ्टवेयर, वो गिफ्ट जो ऊपर वाले ने दिया था उन्हें। बस फिर क्या था, पिता की गणित की क्लास शुरू। वो उनको घर पर ही सिखाने लगे, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह। मेरी कैलकुलेशन तो कहती है कि पिताजी को भी बहुत गणित आती थी। तभी तो चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेने का मन हो रहा है, और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं इस कहानी को जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको सुनाता रहूंगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। आप मेरे यानी समर के साथ हैं, सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। और आज के इस सफर पर मेरे साथ हैं एक ह्यूमन जिनका दिमाग कंप्यूटर था, जिसे पूरी दुनिया ने माना। नाम शकुंतला देवी। उनकी मेमोरी पावर से उनके फादर इतने ज्यादा मुतासर हो गए, इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी की इस प्रतिभा को सबके सामने लाने का फैसला किया। शुरुआत में वो उन्हें सर्कस ले जाते और सबके सामने गणित के सवाल हल कराते, तो अपने आप में सर्कस में ये एक आइटम बन गया, क्योंकि वो सब कुछ झटपट कर लेती थी और भीड़ उनको देखकर खूब ताली बजाती। इसके बाद पिताजी ने वो सर्कस छोड़ दिया और बेटी शकुंतला ने रोड शोज करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते शकुंतला जी हो गई 6 साल की, और तभी उनको पहली बार एक यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। ये थी मैसूर यूनिवर्सिटी। बस फिर यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। यहाँ से वो आगे बढ़ती चली गईं। जब वो 20-22 बरस की थीं, तो पहली बार यूरोप गईं। यूरोप के फेमस रेडियो बीबीसी में उनका एक शो था, जिसमें उनको एक बहुत मुश्किल कैलकुलेशन दी गई लाइव। ये उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में हल कर दी, जैसा कि वो नहीं था, लेकिन वहां बैठे इंटरव्यूअर और उनकी टीम ने जो कैलकुलेट किया वो अलग था। माने आंसर मैच नहीं कर रहा था। शकुंतला जी ने पक्का दावा किया कि उनका उत्तर ही करेक्ट है। इस पर सारे लोग फिर से सॉल्व करने लग गए, और जब वो लोग सॉल्व करते हुए अपना पुराना हल भी चेक कर रहे थे, तो मालूम हुआ कि वो शुरुआती स्टेप्स में गड़बड़ कर बैठे थे। तो उनको अपनी इस गलती का बहुत एहसास हुआ और ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल गई। उस वक्त पूरा विश्व शकुंतला देवी को जानने लगा और उनको ह्यूमन कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। इसके बाद तो इस यूरोप ट्रिप के दौरान उनको कई जगह से बुलावा आया, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने उनको बुलावा भेजा। सच में ये सुनकर तो लगता है कि गणित दिमाग का खेल है, जीवन का गणित भी तो ऐसा ही है। जाने कितना कुछ जोड़ते रहते हैं हम, जाने कितना कुछ घट जाता है जीवन में, और कितने गुना प्यार बढ़ जाता है जब आप लोग मुझे खत लिखते हैं, फेसबुक पर कह के जाते हैं मुझे कुछ ना कुछ। मेरे जीवन का वो भाग कितना प्यारा लगने लगता है, आपको मैं समझा भी नहीं सकता। अब आप क्या सोच रहे हैं, मैं गानों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ आपको। आइए जल्दी से कुछ लिख दीजिए हमारे फेसबुक पेज पर और इन गानों को एंजॉय कर लीजिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर शकुंतला देवी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी के जिंदगी से कुछ किस्से चुनकर मैं ले आया हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप मुझे सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। एक और रेडियो से जुड़ा वाकया मुझे याद आ रहा है। एक दफा रेडियो पर उनका कार्यक्रम हो रहा था। एक औरत ने उनसे अपने 9 साल के बच्चे की बर्थ डेट बताकर पूछा कि उस रोज क्या दिन था जब वो पैदा हुआ, मतलब डे कौन सा था। अब शकुंतला देवी जी ने एकदम सही तारीख और वार बता दिया अपनी कैलकुलेशन से, मगर वो मोहतरमा बोली एकदम गलत। शकुंतला देवी जी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो श्योर थी, लिहाजा उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मेरा जवाब और कैलकुलेशन सही है। तभी वो औरत बोली लेकिन मैं माँ हूँ, मुझे पता है। फिर क्या, शकुंतला देवी जी को बड़ा गुस्सा आ गया, चेहरा एकदम तमतमा गया उनका गुस्से में। बोली अगर मेरा जवाब गलत है तो मैं तुमको 1,000 रुपए दूंगी, ये गलत हो ही नहीं सकता। बहरहाल बात बिगड़ते देखकर आकाशवाणी के उस केंद्र के हेड बीच में आ गए और बोले मेरे पास पिछले 100 सालों का कैलेंडर है, मैं अभी देखकर बताता हूँ। जब उन्होंने साल दर साल तारीखें पलटी तो मालूम हुआ कि शकुंतला जी एकदम सच कह रही थी, उनकी कैलकुलेशन एकदम सटीक थी। जी हाँ, शकुंतला जी पिछली शताब्दी से पूछी गई तारीख के दिन और सप्ताह को बताने के लिए एक पल भी नहीं लेती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो कोई ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी भी तो अपने आप में कैलकुलेशन ही है, कहाँ कैसे कौन सा ग्रह नक्षत्र कौन सी राशि में प्रवेश करेगा ये सभी किसी कैलकुलेशन से कम नहीं है, ये भी उनको आता था। जी तभी तो उन्होंने इस पर भी किताबें लिखी जैसे एस्ट्रोलॉजी फॉर यू। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक फॉर यू आ रहा है, आप ये फेबुलस गाने सुनकर वापस लौट कर आइएगा। ब्रेक के उस पार में आपसे मिलूंगा। मेरा नाम है जवार, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर शकुंतला देवी जी के जिंदगी के अनछुए पहलू हम छू रहे हैं आज। कुछ ऐसे किस्से जो आप जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे किस्से उनकी जिंदगी के जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं, सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
4: शकुंतला देवी जी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। जिन लोगों ने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया, मैं उन्हें बता दूं कि आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी गणित की विद्वान की कहानी है, जिनका नाम है शकुंतला देवी, जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ली तब भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हल कर दी, वो भी चुटकियां बजाती। एक दफा एक पेपर के जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के दौरान उनसे एक गणित का मल्टीप्लिकेशन का सवाल हल करने को कहा। एक तरफ 5 डिजिट्स थी और दूसरी तरफ 6। वेल, मैं भी जानता हूं कि आप मेरी तरह ही श्योर हैं क्या हुआ होगा। झट से शकुंतला देवी ने जवाब दे दिया होगा। दे दिया पक्का। जर्नलिस्ट महोदय गच्चा खा गए, वो अड़ गए कि इसका जवाब ये नहीं होगा। आखिरकार इसी सवाल को हल करने के लिए यू वोंट बिलीव उसी अखबार के अकाउंट्स के लोगों को बुलाया गया, कैलकुलेटर पर आंसर को चेक किया गया। ऐसी कई परीक्षाएं शकुंतला देवी जी को बार बार देनी पड़ती थी। ये साल 1977 की बात है, 1977 में सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी डलास से उनको बुलावा आया। वहां एक 201 डिजिट नंबर का 23rd रूट उनको निकालने को दिया गया। शकुंतला देवी ने इसे महज 50 सेकंड में हल कर दिया, जबकि वहां मौजूद प्रोफेसर को सवाल ब्लैकबोर्ड पर लिखने में ही कोई 4 मिनट लगे थे। ये खबर अगले रोज हर अखबार में थी। एक दफा एक इंटरव्यू में इस बात का राज पूछा गया कि क्या आपको सीधे ही मतलब पहले से जवाब पता होता है या आप स्टेप बाय स्टेप सवाल हल करती हैं? इस पर उन्होंने कहा, स्टेप बाय स्टेप, सारी स्टेप्स वो लिख भी सकती हैं। मतलब मैं क्या बोलूं साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 50 सेकंड में जवाब और वो भी स्टेप बाय स्टेप, मतलब कमाल है। मुझे यहाँ जरूर एक ब्रेक की दरकार है, कुछ तो मैथ्स मुझे भी सीख लेनी चाहिए ऐसा लगता है मुझे अब। हाँ, कुछ गाने सुनते हैं, मैथ्स से अलग कुछ सुरों में उलझते हैं। मैं हूँ समर, रेडियो 24/7 लाइव पर सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है एक ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी जी की। एक कुशल गणितज्ञ होने के साथ ही वो ज्योतिष शास्त्र की जानकार भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट थी, सोशल एक्टिविस्ट और लेखिका भी रही हैं शकुंतला देवी जी, हमारे आज की लेजेंड। साल 1977 की बात हमने आपको बताई थी और इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। ईयर 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में उन्होंने 13-13 अंकों की दो संख्याओं को बिल्कुल सही गुणा कर दिया और मात्र 28 सेकंड्स में। ओह माय गॉड, आपको मैं बताता हूँ ये नंबर्स क्या थे। नहीं, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, सॉल्व नहीं करने को कहूंगा आपको, और अगर आप नंबर से घबरा जाए तो देखिए फिर कोई इलाज है नहीं मेरे पास। ये नंबर से ये संख्या थी 7686369774870 और 2465099745779, जिनको कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किया गया था और इन्हें गुणा करने पर 18947668177995426462773730 संख्या मिलती है। ओ माय गॉड, आप गैस कीजिए इसके बाद क्या हुआ होगा। अजी जनाब, रिकॉर्ड और क्या, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 1982 एडिशन में इस बात को, इस सवाल के जवाब को जगह मिल गई। देखिए, अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ एकदम से, हाँ मैं तो पहले शकुंतला जी की लिखी किताबों को ही पढ़ूंगा, वहीं से सीखूंगा मैथ्स। हाँ जी, उन्होंने मैथ्स की कई किताबें लिखी हैं, कई किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चे पढ़ते भी हैं। मतलब जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो बच्चे इनकी किताब को भी पढ़ते हैं। लेकिन इनकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले इनकी एक और किताब पर डिस्कस कर लेते हैं। वो थी द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। जी, ये किताब उन्होंने क्यों लिखी, आखिर ऐसा क्या था, उनकी जिंदगी के एक और पहलू से आपको मिलवाऊंगा एक ब्रेक के बाद। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। रेडियो 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ। कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: लीजिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपको सुना रहा हूँ ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी जी की कहानी। मैंने उनकी किताब का जिक्र किया था ब्रेक से पहले, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। देखिए, गणित के विषय में शकुंतला जी की अद्भुत प्रतिभा और सवालों को हल करने की उनकी गति का कोई सानी नहीं था, ये सच है। मैं खुद उनके बारे में पढ़कर उनका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। मगर जैसा कि मैंने कहा कि एक और विषय ऐसा था जिस पर उन्होंने कुछ किया लिखा और उसके लिए उन्हें बहुत याद किया जाता, और वो था होमोसेक्सुअलिटी। और ऐसे सब्जेक्ट को, एक ऐसे टॉपिक को सपोर्ट करना, और वो भी तब जब इन सबको बहुत खराब माना जाता था सोसाइटी में, लोग खुलकर बात भी नहीं करते थे, तब इन्होंने समलैंगिकता के समर्थन में संघर्ष किया। दरअसल हुआ ये कि 60s के डेकेड के मिड में शकुंतला जी लंदन से लौटी और उन्होंने कोलकाता के एक IAS ऑफिसर परितोष बैनर्जी से शादी कर ली। इनकी लाइफ ठीक चल रही थी, इनके हस्बैंड बहुत बड़े ऑफिसर थे, लिहाजा इनको कहीं भी बाहर शो करने देना वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ऑल्दो ही वाज अ गुड मैन, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं चला इन लोगों की लाइफ में। काफी साल साथ भी रहे। इस बीच जब 1977 में शकुंतला जी की किताब आई होमोसेक्सुअलिटी पे, तो इसके 2 ही साल बाद दोनों का तलाक हो गया। दरअसल इनके पति भी होमोसेक्सुअल थे, उनको इस बात का सदमा भी लगा, पर शकुंतला इस सबसे ऊपर उठी और उन्होंने न सिर्फ अपने पति को समझा बल्कि भारत में इस समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्होंने अपने लेवल पर समलैंगिक समुदाय के लोगों से बात करके उनके बारे में जानना शुरू किया, उनसे बात की, उनसे पूछा कि वे समाज से क्या चाहते हैं, और उनके अनुभवों को लिखा अपनी किताब में। ये किताब भारत की पहली किताब थी जो इस विषय पर लिखी गई थी, पहली बार किसी ने यह काम किया। खैर, आज इस बात को बहुत साल बीत गए हैं, उनकी इस आवाज को उठाने के कई सालों बाद इंडिया में भी अब होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता मिल गई है। तो चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम और बात करेंगे शकुंतला देवी जी की। अच्छा, उन्होंने एक और किताब लिखी थी, अ परफेक्ट मर्डर, जो एक क्राइम स्टोरी है। ब्रेक के बाद इसके बारे में बात करेंगे। सुनते रहिए समर के साथ रेडियो 24/7 लाइव और लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में शकुंतला देवी की कहानी, मेरी जुबानी।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक। ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। मैं हूं समर आपके साथ। उन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब के जरिए उन्होंने समलैंगिकों के संघर्ष को समाज के सामने रखने की कोशिश की। भले ही उस समय उनकी बातों और विचारों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी, लेकिन आज उनका नाम उन लोगों में शामिल होता है जिन्होंने देश में समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने लिखा, इस किताब को लिखने के लिए मेरी योग्यता सिर्फ यही है कि मैं एक इंसान हूं। इसके साथ ही उन्होंने समलैंगिकता के लिए किसी सहानुभूति की नहीं बल्कि पूर्ण रूप से स्वीकृति की बात की है। पति से अलग होने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान किताबें लिखने पर केंद्रित कर लिया। उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना अपनी सारी की सारी नॉलेज को किताबों के जरिए लोगों को सौंपा जाए। खासकर बच्चों के लिए उन्होंने किताबें लिख डाली। उन्होंने बच्चों के लिए इस विषय को दिलचस्प बनाने के लिए खास टेक्स्ट बुक्स भी लिखी, द जॉय ऑफ नंबर्स, जिसमें एक छोटी सी पोयम लिखी थी उन्होंने कि मोर ऑन टॉप, नो नीड टू स्टॉप, मोर ऑन द फ्लोर, गो नेक्स्ट डोर एंड गेट 10 मोर, नंबर सेम, जीरो इज द गेम। सो ये तरीका था उनका बच्चों को सिखाने का। इसके अलावा एक पजल की किताब कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी उनकी किताब बहुत मददगार साबित होती हैं। एनालिटिक्स स्किल्स सुधारती हैं। उनकी वैदिक मैथ्स और मैथ्स की टेक्निक्स की वर्कशॉप्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही हैं। और उन्होंने सोसाइटी की सेवा के लिए शकुंतला देवी एजुकेशन फाउंडेशन पब्लिक ट्रस्ट भी बनाया। शी एनकरेज रिसर्च इन वैदिक मैथमेटिक्स एंड हेल्प स्प्रेड ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। अच्छा हाँ, मैं आपको उस किताब के बारे में बताना भूल गया जो किताब उन्होंने मर्डर के बारे में लिखी थी, और उन्होंने एक सच्ची मर्डर की घटना पर लिखी थी। वैसे उनके इतने शानदार दिमाग को देखकर मुझे तो लगता है कि उनको CID में होना चाहिए था। नहीं, इस सवाल का जवाब आप हमारे फेसबुक पेज पर लिखकर भेज सकते हैं कि उनके इस शानदार दिमाग से और क्या क्या हो सकता था। मैं इंतजार करूंगा। गाने आ रहे हैं, फिलहाल आपका इंतजार कर रहे हैं। ये इन्हें मैं रिलीज कर रहा हूँ, इन्हें सुनिए, मजे लीजिए और वापस लौट कर आएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर कर रहा है आपका इंतजार।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
3: Radio Masti 24/7 live par. Samar ke saath, aap sun rahe hain Legends Achievers.
4: वेलकम बैक। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, और शकुंतला देवी हैं हमारी आज की लेजेंड, जिन्हें हमारे आज के शो में याद कर रहे हैं हम। वो जीनियस माइंड। कोई भी परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले उनको एक घंटा बहुत शांति चाहिए होती थी फोकस करने के लिए, और इसके बाद जब भी वो स्टेज पर आती अपनी फ्लोइंग साड़ी सोने के आभूषणों से लगदक बहुत ईजी दिखती, कोई स्ट्रेस नहीं, कूल एकदम। वो स्टेज पर आने के बाद किसी को भी उठाकर बर्थ डेट पूछती और उसका दिन और वार बता देती। पहले उनको नंबर्स के बीच कभी कॉमा लगाना पसंद नहीं था। कोई ब्लैक बोर्ड पर वैसे लगाता तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं उनको हिंड्रेंस लगता था। वो बस नंबर्स का फ्लो देखना चाहती थी। बीबीसी पर उनके शो के वक्त उस शो के होस्ट डेविड फ्रॉस्ट की चुटकी भी ली थी उन्होंने। सवाल हल करने के बाद उन्होंने पूछा था, यू हैव गॉट इट। उन्हें भी पता था कि डेविड को भी नहीं मालूम आखिर सब सॉल्व कैसे हुआ। वेल, बाद के कुछ सालों में वो एस्ट्रोलॉजी करने लगी थी बेंगलोर में रहकर। उनकी बेटी अनुपमा बनर्जी उनके साथ ही रहती थी। एक दिन में वो 60-60 क्लाइंट्स देखा करती थी होटल के कमरे में। मींस उनकी एस्ट्रोलॉजी, शादियां काम करेंगी या नहीं, बच्चा होगा या नहीं, बेबी गर्ल या बॉय, बिजनेस चलेगा या नहीं, कई ऐसे सवालों के जवाब और लोगों को हल भी बताती थी। अच्छा, इसके अलावा वो बहुत अच्छी परफॉर्मर भी थी। उनको मालूम था कि किसको क्या जवाब देना है। एक दफा मास्को में एक टीवी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि वो प्रिडिक्ट करके बताएं कि मैं क्या चाहती हूं, मेरे हस्बैंड कितना कमाए। इसका झट से शकुंतला देवी जी ने जवाब दे दिया, यू वॉन्ट योर हस्बैंड टू हैव मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस। और इसके बाद मुस्कुरा कर बोली, एम आई करेक्ट। होस्ट भी हंसने लगी, क्या करती, शायद ब्रेक लिया होगा उसने उस वक्त। तो चलिए मैं भी एक ब्रेक ले लेता हूँ। गानों का ही मस्त म्यूजिकल ब्रेक है, इसे सुनकर वापस जरूर आइएगा, क्योंकि कहानी में अभी कुछ बचा है जो मैं आपको बताऊंगा आज की आखिरी मुलाकात में।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने. ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
3: वेलकम बैक. ब्रेक के इस बार आपका फिर से स्वागत है. भारत की महान गणितज्ञ शकुंतला देवी जी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी. शकुंतला देवी जी जो एक ऐसे परिवार में जन्मी जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परफॉर्मेंस के फील्ड में ही रही. उनके फादर खुद एक परफॉर्मर थे, सर्कस में काम करते थे, रिंग मास्टर थे. शकुंतला देवी जी में भी यही जीन्स आए. वो स्टेज पर आती तो सबको अपनी परफॉर्मेंस में खो जाने को मजबूर कर देती. कभी कभी चाइल्डहुड फेम बच्चों को काफी अलोन फील करा देता है, मगर शकुंतला जी के साथ उनके नंबर्स थे ना, अकेली कहाँ थे वो. उनको हर जगह वो दिखाई देते थे, गाड़ियों की नंबर प्लेट में, ग्रोसरी स्टोर में, टेलीफोन बुक में, टेलीफोन डायरेक्टरी में, हर जगह मैनिपुलेट करती रहती हूँ, रीअरेंज करती रहती, उनके इक्वेशंस बनाती. वो अपने साथ की बड़ी होती हुई लड़कियों से भी अलग थी, एकदम अलग. जब लड़कियां प्यार में पड़ रही थी, ये नंबर से अपना इश्क लड़ा रही थी. अडल्ट हुई तो बस घूमती रही, एक देश से दूसरे देश, लगभग 120 देशों की यात्रा की उन्होंने. लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी किसी चीज की शिक्षा नहीं ली, मगर तब भी वो सब कर पाई. मैथ्स परफेक्ट थी, इंग्लिश की कभी पढ़ाई नहीं की, मगर किताबें इंग्लिश में लिखी. सच्ची है, डिग्री से ज्यादा जरूरी है नॉलेज, जो शकुंतला देवी के पास थी. इसीलिए तो उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था. लेकिन 21 अप्रैल 2013 को वो हम सबको छोड़कर चली गई. ऐसी महान शख्सियत को रेडियो मसी 24/7 लाइव का पूरा परिवार नमन करता है, सल्यूट करता है, सलाम करता है. चलिए आज की कहानी यहीं तक, फिर एक नई शख्सियत के साथ उसकी कहानी के साथ मैं मिलूंगा बहुत जल्द यहीं पर. तब तक के लिए दीजिए इजाजत और जाते जाते करते जाइए कुछ वादे. कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल. किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें. याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में. मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर. तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: रात अकेली है
4: तो क्या हम तो आप

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me raho.
3: Raat akeli hai.
4: Raat akeli hai to kya? Hum to aapke

की बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सोंठ थोड़ा तेल। अरे बाबा

मोटे लाला शौकीन झोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन कोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन जरा नाप जरा झोल इसे लूट उसे दीन।

कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, कहीं ढोल कहीं पोल सीधी बात टेढ़ी चाल।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है।

0: बड़ी पेंदी हुंदी जे, फिर ना क्यों दस्या नहीं, ते मुड़ के जे कित मेरे वांगू फड़े गए ना, ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी, मैं तो ट्यूशन बारे पुछण आया सी।
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

भक्ति के लोगी हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। सेवा हो सेवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तो

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: एक ही ईश्वर है, उसका नाम ही सत्य है। There is one God and His name is the truth.
1: श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: लाइफ में ना ये वाली जो बीमारी है आप कह सकते हैं जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा फायदा होता है। एनीवेज मैं आरजे रिपर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। एंड द पॉइंट इज कि वो कौन सी बीमारी है जिसके होने से हमारा भला होता है। बताऊं चीजें भूलने की बीमारी, चीजें ध्यान से निकल जाने की, दिमाग से निकल जाने की बीमारी। तब उसके बाद आता है मजा। मतलब आलतू फालतू बातें आपको याद नहीं रहती, काम की बातें नहीं याद रहती, लेकिन आलतू फालतू बातें भी आपके दिमाग का जो स्टोरेज है ना वो बिल्कुल नहीं लेती। एनीवेज ऐसा जरूर होगा जब आप बातों पर ध्यान नहीं देंगे। रेडियो मसीर 24/7 लाइफ पर मैं आरजे पर बहुत सारी बातें और बहुत सारे गाने लेकर आ चुकी है। सो डेफिनेटली डोंट गो एनीवेयर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि चीजें पहले थोड़ी बुरी लगती हैं, फिर बाय द टाइम देखते ही देखते अच्छी भी लगने लगती हैं। ये हमारी रियल लाइफ में तो होता है, लेकिन रियल लाइफ में भी होता है, मतलब फिल्मों में भी होता है। सो शुरुआत में तो रामायण मूवी का जो ट्रेलर आया था वो लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन

बाय द टाइम इस मूवी के हिंदी ट्रेलर को तो हल्की हल्की तो तारीफें मिलने चुकी हैं, लेकिन अब इंग्लिश ट्रेलर को भी वाहवाही मिल रही है कि नहीं नहीं, जिस तरह से रामायण को लेकर पिक्चराइजेशन किया जा रहा है ये थोड़ा क्रिएटिव है आजकल की जनरेशन के लिए। एनीवेज, मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेगी कि आप अपने आने वाली जनरेशन को इन मूवीज के थ्रू अपने आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट ग्रंथों के बारे में बताना चाहेंगे या फिर आप खुद से ही होमवर्क करना चाहेंगे? हाँ, 9151896 मेरा नंबर। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th ऑगस्ट आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर। Not all music is loud. Some songs just sneak in. Makes you smile. Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: भाई बात ये है कि थोड़े से दिनों में हम सबके घरों में मेहमान आने वाले हैं और मेहमान आएंगे तो हम उनको कहेंगे कि प्लीज जाना नहीं, आपके जाने पर हमें अच्छा नहीं लगता। कौन है ये भगवान? मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर सबसे पहले उन्हीं का नाम लेगी, गणपति बप्पा मोरिया। हाँ जी, जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर लेकर आ चुके हैं गणेश जी के आइडल्स। हाँ जी, अगर आप भी अपने घर में गणेश आइडल्स रख के सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं या इस बार के लिए सोच रहे हैं तो आपको बेस्ट से बेस्ट ये आइडल्स मिल सकते हैं जी जी मार्ट के साथ। 9, 10, 11, 12 and 13 September की डेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका ऑर्डर इन्हें टाइमली डिलीवर करने में बड़ी खुशी होगी। बुकिंग अमाउंट पर आप स्पेसिफिक परसेंटेज देकर बाकी का अमाउंट जो है वो जब आप आइडल रिसीव करें वहां पे दे सकते हैं। और इनका प्राइसिंग है $50 to $120 के बीच और हर एक गणेश जी की मूर्ति के साथ आपको फ्री पूजा किट मिलेगी। फ्लेक्सिबल बुकिंग्स हैं, बहुत सारे आइडल के कलेक्शंस हैं, तो आपको एडवांस में प्लान करना है, जिसके लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं gtmartonline.com। फिलहाल मैं आज नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी।
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
4: GGMart, your personal grocer.
5: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
6: ऑल इज वेल।
5: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
0: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: So you know what, बहुत सारी चीजों में हमें शर्म आ जाती है, लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज जो है ना वो हमें सिखाते हैं कि देखो इस मामले में बिल्कुल भी शर्म हया के पर्दे नहीं लगाने हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें छुपाना क्या। हाँ, अब ये कौन सा काम है बताऊं कि कितने करोड़ रुपीज आप किसी मूवी के लिए चार्ज कर रहे हैं। ये सवाल हमें पूछने भी अच्छे नहीं लगते हैं और उनको जवाब देने भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए जो सच है ना वो एक्सेप्ट कर लो। सो हेलो, हाय, मैं चेन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। देखो बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उन्होंने पर्टिकुलर चीज के लिए इतना अमाउंट लिया, लेकिन वो सेलिब्रिटीज जो कभी कभी काम करते हैं ना वो बता ही देते हैं, मतलब उनके अंदर ये छुपाने वाली कला होती नहीं है। एनीवेज सो मैं आपको बताना चाहूंगी, मल्लिका शेरावत जो कि बहुत सारी मूवीज के गैप लेके एक अपनी अलग जिंदगी इंजॉय कर रही हैं, उन्होंने बोल दिया है कि भाई मैं कभी भी जो भी अमाउंट कमाती हूँ वो बताने में शर्माती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेहनत से कमा रही हूँ। हाँ, सो रिसेंटली ये एक OTT प्लेटफॉर्म के शो पर नजर आई, तो ऐसा नहीं है कि इनकी TRPs बहुत ज्यादा है, इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं इसलिए इन्हें बुलाया गया है। नहीं भाई, अच्छा खासा अमाउंट दिया गया है, करीबन 9 लाख रुपीज के अराउंड इन्होंने चार्ज किए हैं उस शो में एक छोटा सा रोल निभाने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। एनीवेज मैं आज इन पर आपको बताना चाहेगी, यही सेलिब्रिटीज की जो अंदर की बातें हैं, सच बोलने की कला है, वो पता चलती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।